कितना सुंदर संदेश है सुबह की पहली किरण में, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का उजाला अपना रास्ता बना ही लेता है। उसी तरह जीवन में निराशा, असफलता या कठिन समय हमेशा नहीं रहता, समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती है।

महादैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंसि बजावत धेनु चनैया जग के मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा

0: बसते है सबको। नमस्ते नमस्ते।
1: और चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी कि अंधेरों से घबराकर सफर छोड़ा नहीं करते, उम्मीदों के दिए जलाकर रास्ते खोजा करते हैं। हर सुबह यही पैगाम लेकर आती है, जो बीत गया उसे भूलो, नई शुरुआत तुम्हें बुलाती है। जल्द मुलाकात होगी, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निमू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि

0: मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ₹1,370 की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए ₹70 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है, वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथी T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। PM Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. PM will also address the gathering on the occasion. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by PM Modi in New Delhi. The National Social Assistance Program has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the disability pension scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above.
3: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities

0: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, welcome back, listeners. Aaj 15th October hai, and this day is also celebrated as World Students Day in honor of Dr. EPJ Abdul Kalam, recognizing his deep connection with students and education. Kalam sir hamesha kehte the ki aaj ke students hi kal ke leaders hai. He encouraged young people to develop knowledge, confidence and creativity, strong values. Unki life hame एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है कि योर बैकग्राउंड डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर. योर हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड एटीट्यूड कैन मेक अ डिफरेंस. चाहे आप स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट हो, जॉब सीकर हो या अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, रिमेम्बर फेल्यूर इज नॉट द एंड. इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड राइज अगेन. डॉक्टर कलाम सर मे नो लॉन्गर बी विद अस, बट हिज थॉट्स कंटिन्यू टू inspired millions of people. तो आज उनके बर्थडे पर let's make a promise to ourselves कि dream big, work hard, stay humble and contribute something meaningful to our nation. सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM Rainbow.

0: 101.9।
1: वेलकम बैक लिसनर्स। तो हाँ, स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। कभी मार्क्स कम आते हैं, कभी बेस्ट फ्रेंड से फाइट हो जाती है, कभी फ्यूचर को लेकर कंफ्यूजन होता है। लेकिन याद रखिएगा, एक एग्जाम में कम मार्क्स आने से आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं होती। एक रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं है। लाइफ एक लॉन्ग जर्नी है और स्टूडेंट लाइफ उस जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिएगा। हर किसी का जर्नी अलग है, हर किसी का टाइमिंग अलग है। आपकी सक्सेस का मतलब किसी और से आगे निकलना नहीं, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनना है। एंड नाउ लेट्स डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर चेजिंग देयर ड्रीम्स वन स्टेप एट ए टाइम। सिंधरी आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो, पत्नी आजे अभिज्ञा। रेनबो के लाइफ साथ है, लाइफ है रंगीन।

0: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक लिसनर्स। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी जगह पर जहां आसाम को छूटे हुए पहाड़ है, मॉइस्ट ट्रीज की पीसफुल एटमॉस्फियर है, कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते हैं और हर ट्रेडिशन के पीछे छुपी है एक ब्यूटीफुल स्टोरी। यस, टुडे वी आर ट्रैवलिंग टू द ब्यूटीफुल हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम। लेकिन आज की जर्नी सिर्फ माउंटेन्स, स्नोफॉल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में नहीं है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे सिक्किम की आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड हेरिटेज के बारे में, यानी वहाँ की कला, हस्तशिल्प, परंपराएं और कल्चरल आइडेंटिटी। Did you know that Sikkim is home to different communities including the Lepcha, Bhutia and Nepali community, each contributing to its rich cultural landscape. Unke traditional clothes, folk dances, handicrafts, vegetable festivals aur food habits Sikkim ko ek unique cultural identity dete hain. Imagine kijiye, ek taraf Buddhist monasteries mein spiritual chants ki awaaz, dusri taraf ट्रेडिशनल हैंडलूम्स पर बुने करते हुए आर्टिशियंस और फेस्टिवल्स के टाइम कलरफुल मास और ट्रेडिशनल डांसेस। कितना ब्यूटीफुल कल्चरल एक्सपीरियंस होगा, राइट? सो डियर लिसनर्स, अपनी इमेजिनेशन की सीट बेल्ट बांध लीजिए बिकॉज अब ये जर्नी शुरुआत होने वाली है। सुनते रहिए 101.9 FM रेनबो।

वेल वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम बात कर रहे थे सिक्किम की। दोस्तों, जब हम सिक्किम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ब्यूटीफुल माउंटेन्स, गैंगटॉक लेक और स्नो कवर्ड लैंडस्केप्स याद आती हैं। बट सिक्किम्स रियल ब्यूटी गोज मच डीपर देन इट्स सीनरी। इट्स हेरिटेज इज शेप्ड बाई सेंचुरी ऑफ ट्रेडिशंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी लाइफ एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। सिक्किम बिकेम द इंडियाज़ 22nd स्टेट इन 1975 बिफोर ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन एंड इट हैड अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री एज अ हिमालयन किंगडम। दोस्तों, किसी भी जगह की हेरिटेज सिर्फ पुरानी बिल्डिंग्स या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं होती। हेरिटेज का मतलब है कि वो ट्रेडिशंस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचाती है, जैसे फैमिली के फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल स्टोरीज और स्पेशल ओकेशंस पर पहने जाने वाले कपड़े। सिक्किम में भी यही कल्चरल कंटिन्यूटी देखने मिलती है। जब कोई आर्टिशन ट्रेडिशनल कारपेट बनाना है, जब कोई डांसर जनरेशन से चल रहा डांस स्टेप्स परफॉर्म करता है, या जब कोई फैमिली अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, तब हेरिटेज जिंदा रहती है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कल्चर। इट कनेक्ट्स आर पास्ट विथ आर प्रेजेंट। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपनी रूट्स और ट्रेडिशंस को समझना हमें अपनी आइडेंटिटी से जोड़ कर रखता है। सुनते रहिए आकाशवाणी।

101.9. वेलकम बैक लिसनर्स, अब हम बात करेंगे कि सिक्किम की एक फैसिनेटिंग आर्टिस्टिक ट्रेडिशन की, तंगका पेंटिंग. तंगका पेंटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टिबेटियन बुद्धिस्ट आर्टिस्टिक ट्रेडिशन प्रैक्टिस्ड इन सिक्किम एंड अदर हिमालयन रीजन्स. दोस्तों सोचिए, एक पेंटिंग बनाने के लिए आर्टिस्ट को कितनी कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस चाहिए होगी. हर लाइन, हर कलर और हर छोटी डिटेल पर कितना ध्यान देना पड़ता होगा.

0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलते वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भी उपस्थित थे। डॉ जयशंकर ने बहुपक्षवाद के तत्काल सुधार के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बदली वैश्विक व्यवस्था की गति को समझना जरूरी है। डॉ जयशंकर ने श्री नहयान के साथ बैठक में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने जॉर्जिया के विदेश मंत्री माका बोत्चोरीशविली से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हीली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद, फिनटेक बैठकों और संबंधित आईयूकेएफपी बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने साझा प्राथमिकताओं, रचनात्मक और समावेशी G20 प्रक्रिया की दिशा में ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस साल पूरी होने की उम्मीद है। कल मुंबई में श्री सिद्धू ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में हुई प्रगति द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा के दौरान CEPA के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
1: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन इन द वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में यह माना जाता है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसी तर्क पर मैं कहता हूँ होप फॉर द पीस बट प्रिपेयर फॉर वॉर।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

101.9. वेलकम बैक लिसनर्स, अब आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के सेगमेंट में आखिरी पड़ाव पर। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्किम की स्पिरिचुअल और आर्किटेक्चर हेरिटेज की। सिक्किम के मॉनेस्ट्रीज अपनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, पीसफुल एटमॉस्फेयर और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए जाने जाते हैं। सम वेल नोन एग्जाम्पल्स इंक्लूड रूमटेक मॉनेस्ट्री, ताशीडिंग मॉनेस्ट्री जैसे। दीज प्लेसेस आर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस लाइफ, लर्निंग एंड कल्चरल ट्रेडिशनल्स। दोस्तों कभी कभी हम किसी ब्यूटीफुल प्लेस पर जाकर सिर्फ फोटोग्राफ्स क्लिक करने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर उस जगह की हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस को समझें तो एक्सपीरियंस और भी मीनिंगफुल बन सकता है। मॉनेस्ट्री की वॉल्स पर बनी पेंटिंग्स, प्रेयर व्हील्स, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और पीसफुल सराउंडिंग्स, हर एलिमेंट के पीछे एक कल्चरल या रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। ये प्लेसेस हमें पेशेंस, रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस की याद दिलाती है। सिक्किम की हेरिटेज को अप्रिशिएट करने का बेस्ट तरीका है उसकी ब्यूटी के साथ उसकी ट्रेडिशंस को भी समझना। तो सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM, रेनबो रेनबो के साथ है, लाइफ है रंगीन।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, listener. The time is passing in the studio clock by 12:24. Right. Listeners, आज हम 15 अक्टूबर को हम याद कर रहे हैं ब्रिटेनियन हिंदी सिनेमा की थिएटर एक्टर डायरेक्टर ओम शिवपुरी जी को. ओम शिवपुरी इंडियन थिएटर और हिंदी सिनेमा का एक रेस्पेक्टेड नाम थे. उन्होंने अपनी एक्टिंग जर्नी में कई मेमोरेबल कैरेक्टर रोल्स निभाए.

भाई और थिएटर को भी अपना इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़े रहे और दिल्ली में दिसंतर थिएटर ग्रुप की फाउंडेशन में भी उनका इम्पोर्टेंट रोल था। हिंदी फिल्म्स में उन्होंने सीरियस कैरेक्टर से लेकर नेगेटिव रोल्स तक अपनी वर्सटैलिटी दिखाई। उनकी परफॉर्मेंसेस ने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी कहानी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया। दोस्तों, सिनेमा में हर कैरेक्टर को लीड रोल मिलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सपोर्टिंग रोल्स ही फिल्म की स्टोरी को डेप्थ और स्ट्रेंथ देती है। ओम शिवपुरी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें याद दिलाता है कि थिएटर और सिनेमा दोनों में डेडिकेशन, डिसिप्लिन और टैलेंट की अपनी एक स्पेशल जगह होती है। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर लेट्स रिमेम्बर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर एंड हिंदी सिनेमा विथ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन।

0: 101.9।
1: वेलकम बैक लिसनर्स। अब बात करते हैं एक और मेमोरेबल एक्टर की, पंकज धीर जी, जिन्होंने टेलीविजन सीरियल महाभारत में कर्ण का आइकॉनिक रोल के लिए याद किया जाता है। कर्ण का कैरेक्टर फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट और डेस्टिनी के बीच एक इमोशनल स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। पंकज धीर जी ने अपनी डिग्निफाइड पर्सनालिटी और पावरफुल परफॉर्मेंस से इस कैरेक्टर को जनरेशंस के लिए मेमोरेबल बना दिया। दोस्तों, कुछ कैरेक्टर्स सिर्फ टेलीविजन पर नहीं रहते बल्कि ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। पंकज धीर जी का कर्ण का भी ऐसा ही कैरेक्टर था। आज उन्हें याद करते हुए लेट्स पे ट्रिब्यूट टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन टेलीविजन एंड सिनेमा। उनकी परफॉर्मेंसेस और उनका अनफॉरगेटेबल पोर्ट्रियल ऑफ कर्ण हमेशा फैंस की यादों में जिंदा रहेगा। मे बोथ दीज टैलेंटेड आर्टिस्ट कंटिन्यू टू बी रिमेम्बर फॉर द लेगेसी दे लेफ्ट बिहाइंड। सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9।

वेल दैट वॉज एन अमेजिंग सॉन्ग राइट. जैसे कि हम दोस्तों 90s एरा के गाने बहुत अमेजिंग थे होते थे. एंड यस उस टाइम में काफ़ी ब्यूटिफुल फिल्म्स भी रिलीज हुई थी अक्टूबर में, जैसे कि दिल. इट वॉज एन मैसिव फिनोमिनन इन अक्टूबर. एंड जैसे कि आमिर खान और माधुरी दीक्षित जी की एक्टिंग वॉज अमेजिंग. एंड लाइक आशिकी आशिकी वॉज स्टिल ड्राइविंग द नेशन क्रेजी इन अक्टूबर. और बात करिए घायल फिल्म की, विच वॉज नेशनल अवार्ड विनिंग. दिस फिल्म्स ऑलवेज रिमेन्स इन द हार्ट ऑफ ऑडियंसिस राइट. तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे अभिज्ञा.

101.9. Well, welcome back, listeners. Today we are celebrating a personality who has dedicated decades of his life to the world of radio, Dr. Ash Sridhar Ramamurthy, the Padma Shri Awardee of 2026. Dosto, कभी आपने सोचा है कि एक माइक्रोफोन और एक आवाज कितनी बड़ी चेंज ला सकती है? डॉक्टर श्रीधर वॉज बॉर्न इन तंपरम चेन्नई इन 1947. इंटरेस्टिंगली हिज एकेडमिक बैकग्राउंड वॉज इन केमिस्ट्री. ही कंप्लीटेड हिज डिग्रीज इंक्लूडिंग अ PhD फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड जॉइंड आकाशवाणी इन 1976. फ्रॉम देयर ही वेंट ऑन टू बिल्ड अ रिमार्केबल करियर इन रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग. Imagine that a person with a background in science goes on to become one of the important pioneers of Indian broadcasting. His journey reminds us that educational background doesn't have a limit for our future. Kabhi-kabhi, real potential emerges, we explore new opportunities or dare to think differently. Listeners, aap hi apne life mein kisi qualification ya ek career path tak khud ko limit mat rakhiyega. Keep learning, keep exploring and keep growing, because sometimes the most beautiful

journeys begin when we are brave enough to take a different route. है ना इंटरेस्टिंग. तो इसी सिलसिले को जारी रखेंगे हमारी अग्नि ट्रैक के बाद. सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9.

पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार दोस्तों, एक टाइम था जब स्मार्टफोन्स, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब लेसन्स ये कुछ भी अवेलेबल नहीं थे। रेडियो वॉज हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट साइंस, डिस्कवर न्यू आइडियाज एंड एक्सपैंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। और यही है एक ट्रू इनोवेटर की पहचान। दे डोंट सिंपली आस्क व्हाट कैन आई डू विद द टेक्नोलॉजी, दे आस्क हाउ कैन आई यूज दिस टेक्नोलॉजी टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर। Dr. Sridhar also contributed to educational broadcasting initiatives such as Gyan Darshan, Gyan Vani, helping make education accessible through electronic media. Dosto, innovation ka matlab hamesha koi nayi machine invent karna nahi hota. Sometimes, it means using an existing idea in a way that changes thousands of lives. एंड ये जर्नी वो प्रूव करता है कि नॉलेज बिकम्स ट्रूली वैल्यूबल व्हेन वी शेयर इट विद अदर्स। एंड नाउ लिसनर्स, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारी इंडियन रेडियो फैटर्निटी इन 2026 डॉक्टर आर श्रीधर रामामूर्ति वॉज नेम्ड एज अ रिसिपियंट ऑफ द प्रेस्टिजियस पद्मश्री, इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। द ऑनर रिकॉग्नाइजेस हिज मोर 5 decades of work in broadcasting, educational media and community radio. Yes, keep listening. Akashvani 101.9 FM Rainbow.

101.9। वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, उनके अचीवमेंट सिर्फ एक अवार्ड तक लिमिटेड नहीं थी। हिज जर्नी हैज इंक्लूडेड वर्किंग विद आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग, सपोर्टिंग कम्युनिटी रेडियो इनिशिएटिव्स एंड कंटिन्यू टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर ऑडियो एंड पॉडकास्टिंग। बहुत सारी डिकेड्स के बाद भी उन्होंने एडवोकेट एवोल्यूशन ऑफ द रेडियो एंड नई तरीके भी ढूंढे हैं ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए। एज एन आरजी, आई फाइंड हिज जर्नी वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज इट रिमाइंड्स ऑल ऑफ अस इन ब्रॉडकास्टिंग दैट आवर वॉइसेस कैन डू मच मोर देन एंटरटेन। दे कैन एजुकेट, इंस्पायर, प्रिजर्व कल्चर एंड ब्रिंग कम्युनिटीज टुगेदर। तो दोस्तों, आज हमने ढेर सारी बातें की है, बहुत सारे इंस्पिरेशनल एंड थॉटफुल लेसन्स भी सीखे हैं, कई सारे अमेजिंग गाने भी सुने। तो आज के लिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, पर आप लोग कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए क्योंकि अगले आरजे आपसे जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन।

0: धड़ी से
1: जागरूक होना है अपने अधिकारों के प्रति,
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए,
0: सजग रहिए।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है
1: अफवाहों से,
0: धोखा

0: Rainbow
1: 101.9. PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: స్టూడియో క్లబ్ లో సమయం 4:03 అయింది. ఇప్పుడు వినండి సందేశ్ టు సోల్జర్స్.
1: यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो. आज का प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और आज के हमारे संदेश टू सोल्जर्स के बहुत ही विशेष अतिथि हैं कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन, और हम उनका स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे इस खास शो में. कर्नल कंवर भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर.
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय निकाला और आज आप हमारे शो में शामिल हुए हैं. हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आप हमारा शो लाइव सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में, और आप हमें मैसेज करके कर्नल कंवर भारद्वाज से सवाल कर सकते हैं. कुछ बात करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर. और हमारे साथ आज के बहुत ही विशेष अतिथि जिन्होंने देश को देश की सेवा में दो पीढ़ियों से ज्यादा की सर्विस दी है डिफेंस सर्विसेज में. कमीशन किए गए कर्नल कंवर भारद्वाज इंडियन आर्मी में 11 जून 1967 को राजपुताना राइफल्स इन्फेंट्री में. 1971 वॉर वेटरन हैं कर्नल कंवर भारद्वाज. 1971 वॉर में उन्होंने कंपनी कमांडर के तौर पर लड़ाई लड़ी. उसके बाद उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और किस तरह से शुरुआत हुई वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है. हम बातचीत शुरू करते हैं हमारे आज के खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज से. सर, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हुई शुरुआत आपका, या परिवार में कोई बैकग्राउंड नहीं था आर्मी से, आप किस तरह से जुड़े, कैसे वो जज्बा आपके दिल में आया.
2: मैं अपने बारे में बताने के साथ ये भी कहूँगा कि मैं एक बहुत ही जमींदार फैमिली का तीसरे नंबर का बेटा था
1: जी.
2: और मेरे पिताजी जो थे वो एक फार्मर थे, और उसमें जो मैंने मैट्रिकुलेशन किया वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके और आर्मी ज्वाइन की एज ए जॉन.
1: अच्छा.
2: और टेक्निकल रेजिमेंट सिग्नल्स के अंदर मेरा इंट्री हुआ व्हेन मेरी उम्र केवल 17 साल 216 दिन की थी.
1: अच्छा.
2: और उस समय हम सिग्नल्स के अंदर रिक्रूट भर्ती किए गए थे
1: जी.
2: और वहाँ भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग वगैरह खत्म किया और उसके बाद में हम जालंधर पोस्टिंग हो गए एज ए जॉन.
1: अच्छा.
2: ये फौज के बारे में मोटिवेशन इतना कुछ नहीं था
1: जी.
2: एक जमींदार फैमिली से
1: जी.
2: होने के नाते कॉलेज से भागकर,
1: अच्छा,
2: फर्स्ट ईयर कॉलेज से भागकर हम आर्मी के अंदर ज्वाइन किया
1: जी.
2: और अपना मोटिवेशन यही था कि हम आर्मी के अंदर किस प्रकार से नौकरी करें
1: जी. सर, आप एक जमींदार, एक किसान परिवार से आते हैं, आपके पिताजी किसान थे, तो आपका किस तरीके से वो परिवेश रहा और अचानक फिर ऐसे आपके दिल में जो जज्बा आया फौज ज्वाइन करने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए, तो ये कहाँ से मोटिवेशन, जैसे आपने बताया कि हम
2: ये बहुत ही एक अजीब सी बात है कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नौकरी करूं.
1: अच्छा.
2: बट जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ी रहा था गवर्नमेंट स्कूल गढ़ी अरसरू में
1: जी.
2: उस समय मेरा इंगेजमेंट हो गया.
1: अच्छा.
2: और इंगेजमेंट से डर के शादी नहीं करें अभी कॉलेज से भाग करके और बगैर बताए पेरेंट्स को हमने आर्मी ज्वाइन कर ली.
1: अरे वाह.
2: और आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब पता पड़ा हमारे पिताजी को कि हम फौज में जा रहे हैं तो पूरा परिवार बहुत नाराज था. और पिताजी ने आकर के काफ़ी कुछ कोशिश की, क्योंकि जो मेरी वाइफ जो शिक्षा भारद्वाज जो अभी नहीं है
1: जी.
2: वो उनके ताऊ जी वहाँ पे हेड क्लर्क पोस्टेड थे.
1: अच्छा.
2: सोल्जर बोर्ड में. और गुड़गांव में जब भर्ती

0: हुआ
1: जी
0: तो मेरे फादर जो हैं वो उनके ताऊ जी के पास पहुंच गए और मेरी कंप्लेंट की कि भर्ती होके जा रहा है, इसकी शादी वगैरह अरेंज कर रहे थे तो इसको रोको। तो
1: अच्छा
0: मैंने बड़े रौब से बगैर ज़्यादा कुछ बोलते हुए अपने
1: जी
0: फादर का बहुत रिस्पेक्ट करता था और
1: जी
0: गर्दन नीचे करके और अपने जो वुड बी फादर इन लॉ को भी ये बोल दिया कि जी फौज में जाना मेरे को अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू गो एंड ज्वाइन द आर्मी ओनली।
1: जी तो
0: तो
1: आप
0: मैं
1: डिटरमिन्ड रहे, आप मजबूत रहे कि मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी ही है।
0: एक्चुअली ये था कि 10th करके अगर कॉलेज में आगे नहीं पढ़ना है
1: जी
0: और जोश था कि आर्मी ज्वाइन करें, क्योंकि
1: जी
0: आर्मी उस टाइम पे नंबर वन प्रोफेशन होता था आज के जमाने को ना कहते हुए।
1: जी
0: एंड आई हैड द इंसिस्टिंग टू माई सेल्फ इन दैट फीलिंग कि
1: जी
0: इससे बढ़िया नौकरी कुछ नहीं हो सकती।
1: अच्छा सर, वो कौन सा साल था जब आपने ज्वाइन किया?
0: इट वॉज 1961
1: 61।
0: या एंड आई वॉज पोस्टेड रादर फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर,
1: अच्छा
0: और वहाँ पे इतना ज़्यादा तगड़ा हुआ
1: अच्छा
0: और जो मेरे वुड बी फादर इन लॉ थे उसने जाते समय वार्निंग दे दी थी कि अगर जा ही रहे हो बगैर हमारे बताए
1: मर्जी के।
0: मर्जी के
1: जी
0: तो वहाँ जा करके फिर ये मत बोलना कि आप हमारा नाम कटवा
1: अच्छा
0: दो।
1: अच्छा अच्छा मतलब ऐसे नहीं कि आप पीछे हट जाएं।
0: और जिस काम से मैं भागा था,
1: जी
0: जिससे शादी ना करने के डिले करने
1: जी
0: की शादी से भागा था, जब मैं रिक्रूट ही ट्रेनिंग कर रहा था
1: जी
0: तो मेरे को 10 दिन की छुट्टी ला बुला करके और मेरी शादी भी हो गई।
1: अच्छा
0: वेन सी वॉज 14 ईयर्स एंड आई वॉज 18 ईयर्स ओनली,
1: ओके okay.
0: बिकॉज आई ज्वाइंट द आर्मी वेन माई एज वॉज ओनली 17 ईयर 216 डेज।
1: अच्छा आप पूरे 18 के भी तब तक नहीं हुए थे,
0: जी
1: और आपने अपनी सर्विस जो है नेशन के लिए, आर्मी के लिए, फोर्स के लिए देना शुरू कर दिया था।
0: जी
1: जी तो सर, शुरुआत किस तरह से हुई? आप इन्फेंट्री में रहे, राजपूताना राइफल्स में रहे, तो यही शुरुआत थी, या इससे पहले भी आपने किसी और जगह भी काम किया आर्मी में?
0: एक्चुअली जब सिग्नल्स के अंदर
1: सिग्नल्स
0: हम
1: में।
0: जवान थे
1: जी
0: तो वहाँ हमारी पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म करने के बाद में
1: अच्छा
0: जालंधर,
1: ठीक है
0: जालंधर अलर्न कोर सिग्नल रेजिमेंट, उसके अंदर पोस्टिंग हो गई।
1: जी
0: एंड व्हेन आई वाज देयर 1962 का चाइना के साथ वार
1: अच्छा
0: हुआ,
1: जी
0: सो
1: जी
0: दैट टाइम हम जवान थे तो
1: अच्छा
0: पूरी रेजिमेंट के अंदर काफ़ी
1: जी
0: तहलका मचा हुआ था और हम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जवान बन गए थे वहाँ पे। और 62 का ऑपरेशन के बाद में
1: जी
0: इमरजेंसी कमीशन स्टार्ट हुआ,
1: अच्छा
0: तो इमरजेंसी कमीशन के दौरान
1: जी
0: मेरे को स्पेशली एक अच्छा जवान सेलेक्ट करके
1: अच्छा
0: और कमांडिंग ऑफिसर के साथ में कुछ एक कैंडिडेट से जिनका
1: जी
0: इंटरव्यू कैंडिडेट करके और कर्नल साहब को जो हमारे सीओ थे उस समय
1: जी
0: उनको स्क्रीन आउट करना था कि कौन को हम आगे एसएसबी के लिए रिकमेंड करें।
1: अच्छा
0: सो वो बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट है विच यू वुड लाइक टू नो
1: जरूर सर, जरूर हमारे
0: कि
1: लिसनर्स।
0: मेरे को ये ड्यूटी दी गई कि सबको बारी बारी कमांडिंग ऑफिसर साहब के अंदर ऑफिस में
1: ऑफिस
0: भेजते
1: में भेजा
0: रहिए
1: जाए।
0: और इनके
1: जी
0: डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके एंड डू दैट फुल।
1: जी
0: सो सीओ साहब 1:30 बजे लंच ब्रेक के लिए घर चले गए और जाते समय बोल गए कि मैं 3 बजे वापस आऊँगा और 3 बजे के बाद में बाकी कैंडिडेट्स का हम इंटरव्यू करेंगे।
1: अच्छा
0: 3 बजे वो सही डॉट 3 वापस आ गए तो
1: जी
0: फर्स्ट कैंडिडेट को हमने बोला कि आप अंदर जाइए, तो वो अंदर गए तो उन्होंने जाते ही अंदर जाते ही बोला गुड मॉर्निंग सर।
1: अच्छा
0: तो सीओ आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द टाइम, 3:05 सर।
1: अच्छा
0: तो व्हाई आर यू विशिंग मी गुड मॉर्निंग सर, तो ही सेड के सर वी हैव बीन टोल्ड इन द सिविल इफ यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम यू मस्ट
1: अच्छा
0: विश हिम गुड मॉर्निंग। बोलता है इफ देर इज एनी हार्म इफ यू विश मी गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग,
1: जी
0: बट सर वी हैव बीन टोल्ड द सिविल लाइक दैट। ही पुट अप सन अदर क्वेश्चन टू हिम ऑल्सो,
1: जी
0: सो ही वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई इट प्रॉपरली। देन ही कॉल्ड फॉर मी,
1: जी
0: आई इंटर्ड एंड सलूटेड हिम एंड ही पुट अप ऑल दोज क्वेश्चन टू मी एंड स्ट्रेट वे जो ही वो जैसे सवाल सारे मैं फटाफट जवाब दिया
1: जी
0: तो कर्नल साहब ने मेरे को तो चेयर ऑफर कर दिया और उसको बोला थैंक यू
1: अच्छा
0: कैरी ऑन।
1: और आपको
0: एंड
1: सिलेक्ट कर
0: ही
1: लिया।
0: इंसिस्टेड मी और रादर मोटिवेटेड मी
1: जी
0: यू ट्राई फॉर कमीशन, वाई डोंट यू ट्राई फॉर कमीशन। आई सेड सर आई एम नॉट ग्रेजुएट, आई एम मेट्रिकुलेट ओनली, आई एम नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन टू अप्लाई फॉर द
1: फुलफिल द
0: इमरजेंसी
1: जी
0: कमीशन।
1: क्राइटेरिया।
0: एंड ही टोल्ड मी दैट ओके क्राइटेरिया नहीं है अभी तो आप ACC के अप्लाई करिए, यू
1: जी
0: अप्लाई फॉर आर्मी कैडेट कॉलेज एंड आई सी दैट यू गेट सेलेक्टेड। एंड माइंड यू आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक, देर
1: अच्छा
0: वॉज 63 कैंडिडेट्स फॉर माई रेजिमेंट, दोज हु अपियर फॉर इनिशियल आर्मी कैडेट कॉलेज
1: जी,

0: देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है शाहिद और आज हमारे हैं खास मेहमान कर्नल कमर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे इस शो में।
1: वेलकम, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया आज हमारे साथ। आप जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बता रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनोखी भी हैं और बहुत ही खुशी देने वाली भी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने बचपन से ही किस तरीके से आपके मन में था कि आपको फौज में भर्ती होना है और आपने किसी की परवाह नहीं की और आपने वो मकाम बनाया जो हर इंसान के लिए, सर मैं समझता हूँ कि आसान नहीं होता, जाहिर है बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, तो वही आपने अपनी लाइफ में वो किया, अपने करियर में आपने जो अचीवमेंट्स हासिल की, वो जो मकाम आपने बनाया, तो इसके बारे में आपके कुछ, सर कुछ शब्द मैं चाहूंगा कि आप कहना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं?
1: आई थिंक ऊपर वाले ने जो दिया है
0: जी,
1: जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे भी बहुत अच्छा मिला है। और जो 71 वॉर के बारे में
0: जी
1: मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बड़ा यंग ऑफिसर था एंड आई वॉज मेजर रैंक था मेरे पास में
0: जी।
1: आई वॉज कमांडिंग वन ऑफ द कंपनी ऑफ 9th बटालियन राजपूतन राइफल
0: जी
1: इन पुंछ सेक्टर,
0: पुंछ सेक्टर में
1: yeah.
0: जी। तो सर 1971 वॉर वेटरन हैं आप, तो उसके सर हम उस वॉर के बारे में जानना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा रहे हैं, तो वो किस तरीके का सर दौर था, वो क्या हालात थे, और जब वो जंग थी तो उस पर आपका और जो जो नेशन उस वक्त जो देश पर में चल रहा था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: देखिए उस समय जो हालात थी
0: जी,
1: मुक्ति वाहिनी वगैरह बहुत पहले से मूवमेंट शुरू हो चुके थे
0: जी
1: ईस्टर्न सेक्टर में, बट नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर पुंछ एरिया स्पेशली उस साइड के अंदर कोई ज़्यादा इतनी चहल पहल नहीं थी, लड़ाई की तैयारियां नहीं थी। लेकिन लकली वी हैड ए जनरल ड्यू कमांडर मेजर जनरल कुंदन सिंह
0: जी,
1: ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम राजपूतन राइफल्स एंड ही हैपन टू बी ए वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग जनरल हु रिटायर्ड एज MS लेफ्टिनेंट जनरल। ही वॉज द वन हु पुल्ड अप द कंप्लीट डिवीजन एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर एनी eventuality or any war type thing.

0: that time.
1: Ji.
0: So he was the one, and I was with the Bravo company commander.
1: Achha.
0: In Punch sector, where Punch is other side of the Punch river, and Ji, we were the other side of the this side of the Punch river, and
1: Achha. Other Aap side of the
0: हम इस साइड में थे.
1: अच्छा.
0: और पुंछ के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट होता है.
1: अच्छा.
0: एंड आई वाज फेसिंग द पाकिस्तानीज अपोजिट माय पोस्ट अक्रॉस द रिवर, पुंछ रिवर.
1: मतलब आमने सामने की,
0: आमने सामने थे
1: बिल्कुल.
0: और उनके पास में वहां पे आरसीएल गन लगी हुई थी.
1: अच्छा,
0: और एमएमजी लगी हुई थी.
1: ओके.
0: वो डायरेक्टली हमारे अंडर व्यू थी. दे कुड फायर एट अस एंड वी कुड फायर एट देम.
1: अच्छा, बिल्कुल आमने सामने,
0: आमने सामने फ्रॉम दैट टॉप. एंड आई हैड, you know, company was deployed on three posts.
1: Achha.
0: And I was on the middle post. From middle post, जो पहाड़ी का था,
1: जी.
0: उसे हम पूरी कंपनी को अपना कंट्रोल करते थे.
1: ठीक है.
0: और सामने से फायर वगैरह आते थे. चार तारीख फोर्थ ऑफ डिसम्बर
1: जी
0: फायरिंग स्टार्ट हो गया. तो फायरिंग स्टार्ट होने के बाद में पूरी रात हम लगभग लड़ाई लड़ते रहे. और जो ही फायरिंग स्टार्ट हुआ, तो माई एक्शन वॉज कि मैंने पूरे जवानों से मिलकर उनको हौसला बढ़ाना है. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली व्हेन द फायरिंग वाज गोइंग ऑन, आई नेवर बॉदर्ड. फर्स्ट आई वेंट टू अदर पहाड़ी, अदर जो कि जमीर पिकेट थी, ऑलमोस्ट अबाउट अ किलोमीटर अदर साइड ऑन द अपहिल ऑफ द माउंटेन. एंड आई मेट ऑल द पर्सनल एंड जवानों का, जवानों का हौसला बढ़ाते बढ़ाते. देन आई वेंट टू द अदर पिकेट and then to my own picket, and complete night I was active with that.
1: Achha,
0: pity the people.
1: ये movement आपकी पूरी रात रही.
0: पूरी रात रही.
1: जी.
0: And when I
1: wait करते रहे, हौसला बढ़ाते रहे.
0: You know we have the command post.
1: अच्छा.
0: And command post is sort of a very very solid bunker.
1: बिल्कुल.
0: From where you could observe and then direct the firing and other thing also, and command your company also.
1: बिल्कुल.
0: So from the command post early in the morning, it was going to be daylight. I got out from my command post and was going for a pee place.
1: Ji.
0: To a toilet.
1: Ji.
0: And the toilet was, you know, all temporary.
1: Ji, bilkul.
0: Tin ke na tarmac ke tin hote hain, drum. उसको कट करके एक बड़े से पत्थर के साथ में
1: उसको बनाया जाता है,
0: बनाया गया.
1: ठीक है.
0: टेम्परेरी टाइप.
1: जी.
0: सो आई वाज गोइंग टू दैट वन. सो बंकर टू बंकर, और वी हैव द कम्युनिकेशन ट्रेंचेस. कम्युनिकेशन ट्रेंचेस आर द यू नो सॉर्ट ऑफ से अबाउट 5.5-6 feet डीप.
1: अच्छा.
0: थ्रू विच यू कैन वॉक.
1: अच्छा, उसके, अच्छा, उसके बीच में से आपको गुजर के जाना होता है.
0: चल के जाना होता है.
1: जी.
0: सो व्हेन आई वाज वॉकिंग टू टॉयलेट एंड देन क्लाइंब अप एंड गेट आउट फ्रॉम दैट वन,
1: जी,
0: दैट टाइम देयर वाज अ साउंड ऑफ ए आरसीएल फायर.
1: अच्छा.
0: व्हेन द आरसीएल फायर केम, तो माई ऑपरेटर वॉज विद मी.
1: जी.
0: एंड ही वॉज कमिंग आउट विद मी कि मेजर साहब कहाँ जा रहे हैं.
1: जी.
0: तो वो मेरे साथ जो ही निकला, उसने सुना कि अब फायर हो गया आरसीएल.
1: जी.
0: और इसने मेरा हाथ पकड़ के और पीछे गिरा दिया.
1: अच्छा.
0: और बोला अरे सब मरोगे. एंड इन द मीन टाइम द आरसीएल बम हिट दैट टॉयलेट वॉज, इट वॉज थ्रोन अप इन पीसेज, एंड द बिग द रॉक ओवर देयर, इट वॉज ऑल ब्लोन अप, एंड वी वर really in danger, and it was a good luck of mine.
1: कुछ seconds
0: thank
1: कही सिर्फ
0: yes
1: आप मतलब वो जो सामना होने वाला था,
0: it would have been entirely different thing. I would have been pieces, not sitting in front of you today.
1: बिल्कुल.
0: So that was the one. Then what happened next day early afternoon, we got a order that you have to move out.
1: अच्छा.
0: To another battalion, that is Banwat sector, and defend a company of other Chesik, which was in danger, which was attacked that night.
1: Achha, and
0: next night they were to be attacked.
1: Ji.
0: So that one of the FDL behind, that is number, the FDLs were numbered at 405, 406.
1: Achha.
0: So 406 was in danger. It was encircled by the enemy.
1: Achha.
0: So I was told that your company will go and reinforce that.
1: Reinforce.
0: 405 picket, so that you we could fight back the enemies. So I moved my company before last light to the that side towards Punch. We had to go across the Punch river. Then Punch township is there.
1: Ji.
0: Pass through that place and they climb up almost about 2000 square

0: अच्छा
1: एंड ऑल दीज पीपल दोज टेल में जो कंट्रोल करते हैं, तो मेरे को उनको जाके ब्रीफिंग लेना था. उनसे ब्रीफिंग लेने के बाद मेरे को ऑपरेशन करना था. सो
0: जी
1: टाइम वॉज रनिंग शॉर्ट. तो व्हेन आई फाउंड के आगे से वो बैठ गए सारे,
0: जी
1: तो मैंने जाके जवानों से पूछा क्या हुआ. मौलवी साहब वो मल्होत्रा साहब आगे बैठ गए. आई कॉट होल्ड ऑफ मल्होत्रा फ्रॉम हिज नेक एंड आई टोल्ड हिम व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाई यू स्टॉप्ड. बोले सर टायर्ड. मैं कहा यू गेट बैक एंड आई वॉज द वन टू लीड द कंपनी रीच टू द 405
0: फाइव
1: एफ डी एल
0: जी
1: एंड आई मेट द सीईओ. सीईओ ब्रीफ्ड मी. आई आई रिक्वेस्टेड सीईओ के सर गिव मी टू स्कॉट दोज हु कैन टेल मी के फ्रॉम वेयर द फायर इज कमिंग
0: जी
1: सो दैट माई जवान्स कैन अटैक दैट वन एंड आई डोंट सफर कैजुअलिटीज.
0: जी
1: सो वैन ही टोल्ड मी दैट ओके मेजर स्वाइन इज द कंपनी कमांडर एंड
0: जी
1: यू टेक टू टू जवान्स फ्रॉम हिम दे विल टेल यू के फ्रॉम वेयर द फायर इज कमिंग. सो वैन आई वेंट टू हिम मेजर स्वाइन सेट नो आई एम ऑलरेडी अंडर द अटैक आई विल नॉट
0: अच्छा
1: बी एबल टू गिव एनी थिंग. सो आई वैक वॉक बैक टू कमांडिंग ऑफिसर
0: जी
1: ऑफ छे सिख एंड आई सेट सर योर कंपनी कमांडर इज नॉट गिविंग मी स्कॉट. देन ही सेट के द टास्क इज गिवन टू यू. मैं कहा वेल कर्नल सो एंड सो यू आर टॉकिंग टू द कंपनी कमांडर ऑफ 9th बटालियन ब्रावो कंपनी एंड आई विल सी दैट माई टास्क इज कंप्लीटेड बिफोर द फर्स्ट लाइट एंड आई एम गोइंग. सो
0: ठीक
1: हिज
0: है
1: एडजुटेंट केम रनिंग विद मी एंड
0: अच्छा
1: ही आस्क्ड दैट मेजर स्वाइन टू गिव मी स्कॉर्ट एंड आई पुट अप एन अटैक सॉर्ट ऑफ थिंग आई शुड से
0: जी
1: के वी हैड टू गो डाउन. वी
0: जी
1: हैड टू गो डाउन इन द व्हाट यू कॉल वैली
0: अच्छा
1: एंड क्लाइम अप अगेन एंड देन देर इज अ ब्लैक रॉक. फ्रॉम देयर द MMG एंड LMG ऑफ पाकिस्तान जो देवर फायरिंग. देर वर नंबर ऑफ म्यूल्स दोज वर किल्ड एंड वन ऑफ द कैजुअलिटी वॉज देयर. अदर पीपल वर ऑल्सो इंजॉयड इन दैट वैली.
0: जी
1: बट बिफोर द फर्स्ट लाइट आई वॉज
0: जी
1: एबल टू क्लाइम अप एंड दैट एनिमी लेफ्ट हिज दैट लोकेशन
0: अच्छा वो तब
1: लिविंग
0: तक
1: सम
0: वहां से
1: अमनेशन इन वन ऑफ
0: जी
1: द
0: पीछे हट चुके
1: एंड
0: थे वहां से
1: देर रन अवे फ्रॉम देयर
0: जी
1: एंड आई ज्वाइंट मेजर पंजाब एंड मेजर पडावर देयर एंड देयर वर 36 पाकिस्तानी दोज वर किल्ड बाई दैट कंपनी दैट नाइट इटसेल्फ. सो नेक्स्ट मॉर्निंग वी पिक्ड अप ऑल दोज डेड बॉडीज ऑफ देम. आई हैड ब्रेकफास्ट एट ए हॉट ब्रेकफास्ट विद मेजर पंजाब एंड ऑल
0: अच्छा
1: एंड देन नेक्स्ट टास्क वॉज गिवन टू मी टू गो टू हेल्प आउट अदर कंपनी बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग कंपनी कमांडर एंड आउटस्टैंडिंग कंपनी इन द कंप्लीट डिविजन विद
0: जी
1: माई यंग जोस एंड ऑल दैट एंड आई हैड स्टूड फर्स्ट इन वन ऑफ द कंपटिशन विच वॉज कंडक्टेड एट द डिव लेवल एट द डिव हेडक्वार्टर रजौरी एंड द डिव
0: अच्छा
1: कमांडर हिमसेल्फ हैज गिवन द प्रेस्ट ऑफ माइंड दैट ब्रेव कंपनी कमांडर मेजर KS कंवर भारद्वाज एज वन
0: जी
1: ऑफ द आउटस्टैंडिंग ऑफिसर इन दिस वट यू दैट कंपटिशन ट्रेनिंग वी हैड इन द डिव बेटर स्कूल.
0: जी
1: सो दैट वॉज द रेपुटेशन ऑफ दैट थिंग.
0: बिल्कुल सर
1: सो
0: आपकी आपकी वो जोश और जज्बे से भरा हुआ वो जो मोमेंट रहा उसमें आपने इतना बड़ा उसमें जो है कंट्रीब्यूशन दिया रोल प्ले किया तो वो वाकई यादगार है और जैसे कि आपने बताया कि वो आपकी यादों में जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए और वो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में हमेशा के लिए वो जुड़ा हुआ
1: जो
0: है
1: अभी
0: वो
1: आप बात कर रहे हैं अभी वैसा जोश आ रहा है जैसे
0: जोश आ रहा
1: अभी
0: है
1: भी मैं
0: बिल्कुल
1: उसी लड़ाई उसी पहाड़ और उसी
0: जी जी
1: ब्लैक रॉक जिसको मैंने जाके कैप्चर किया था
0: कैप्चर किया
1: और
0: बिल्कुल
1: वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सामने अभी से
0: बिल्कुल
1: मैं फिर
0: सर
1: से जवान हो जाऊं.
0: आप उन यादों में पहुंच गए और मैं आपके साथ उन यादों के साथ ही वहां पर पहुंच गया आपकी बातों में कि मुझे महसूस हो रहा था कि मैं वहीं आपके साथ पीछे पीछे चल रहा हूं आपकी बातों में और आपकी यादों में जहां आप वॉर फ्रंट पर थे और आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे
1: से इट्स वेरी नाइस टू टॉक ऑन दैट लाइन.
0: जी और सर इसके बाद भी हम आगे आपसे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि हम और भी चीज़ें आपसे जानें जैसे आपने 1971 वॉर की आपने जो इंसिडेंट बताए यादगार कुछ लम्हे आपने शेयर किया हमारे साथ सर आर्मी सोल्जर्स ने सिर्फ वॉर फ्रंट पर ही नहीं उसके अलावा अलग अलग स्ट्रीम्स में भी स्पोर्ट्स में भी गोल्ड और अदर मेडल्स भी जीते हैं तो आर्मी का कितना बड़ा रोल रहता है वो हर तरह से जैसे कि आपने भी कहा आप नेशनल लेवल चैंपियन भी रहे वॉलीबॉल के बॉक्सर भी आप रहे आप एक बेहतरीन रनर भी थे तो आर्मी इन सब चीज़ों में भी आगे रहती है हमेशा वो।

0: वहां भी कीर्तिमान स्थापित करती है।
1: राइट फ्रॉम द डे वन
0: जी
1: फिजिकल साइड हैड बीन माय द बेस्ट
0: जी
1: आई से माय स्ट्रेंथ एंड देन माय मोटिवेशन
0: बिल्कुल
1: माय एम
0: फिजिकल स्ट्रेंथ
1: एंड डिटरमिनेशन ऑल दोस थिंग्स टुडे आई कैन से अगेन दैट आई सेल्फ मेड मैन इज इन फ्रंट ऑफ यू ठीक है फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑफ ए फार्मर फैमिली एट माई ओन विदाउट एनी सिफारिश और विदाउट एनी रिकमेंडेशन और ब्राइब और एनी थिंग आई वॉज द वन टू डू ऑल दिस थिंग
0: बिल्कुल आपने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरुआत की और आपने जो अचीवमेंट हासिल करी वो आपकी अपनी अर्न की हुई है, अपनी मेहनत से आपने वो जो एक मकाम हासिल किया।
1: यू विल बी प्राउड टू टेल यू दैट मैंने जब बटालियन में कदम रखा
0: जी
1: तो अपने आप को बटालियन में किसी जवान से कम नहीं समझा। मेरे फिजिकल में इतना दम था कि जवान भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ऑफिसर की तो बात ही छोड़ दी।
0: क्या बात है सर।
1: और मैंने जब बटालियन जामनगर आ गई तो उस समय मैंने बटालियन में बॉक्सिंग टीम रेज की, वॉलीबॉल टीम रेज की और वो वॉलीबॉल नेशनल लेवल के प्लेयर बनाए और जो बॉक्सर सेलेक्ट किए थे उसमें फर्स्ट टाइम 4 बॉक्सर कमांड लेवल तक बॉक्सिंग किया।
0: क्या बात।
1: एंड माई क्रॉस कंट्री रनिंग और दे लॉट ऑफ अदर कंपटीशन आई यूज टू कैरी इवन द हैवी लोड ऑफ आरसीएल और
0: आरसीएल सर बहुत भारी
1: उसको कैरी करना पड़ता है।
0: अच्छा
1: MMG कैरी करनी पड़ती है, 3 पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं।
0: अच्छा उसको
1: तो उसको लेकर के हमको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो ऐसे लंबी दौड़ें लगानी पड़ती है।
0: अच्छा
1: सो आई यूज टू बी लीडिंग अमंग द जवान्स ऑल्सो विद ऑल दोट एंड माई CO एंड माई 2IC एंड माई बटालियन यूज टू कॉल मी रनिंग हॉर्स।
0: रनिंग हॉर्स
1: रनिंग हॉर्स
0: क्या बात है सर।
1: सो दैट वॉज एंड माइंड यू दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो मैरिड एंड फादर ऑफ वन डॉटर देन सन वॉज ऑल्सो बॉर्न देयर ओनली जामनगर।
0: क्या बात है सर।
1: कर्नल आफ्टर दैट आई हैड गॉन टू द वॉर।
0: जी कर्नल कमर भारद्वाज की बात सुनकर के हम भी जोश से पूरी तरीके से भर गए हैं और यहां पर मैं जरूर कर्नल कमर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं 1971 वॉर वेटरन हैं हमारे साथ मौजूद हैं संदेश टू सोल्जर्स में, उनको सर मैं आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ जो आपकी पसंद से मैंने गाया था। ब्यूटीफुल ट्रैक घर से निकलते ही आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर शाहिद के साथ। आप हमें संदेश टू सोल्जर्स में कर्नल कंवर भारद्वाज से आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107007 पर और जो मैसेजेस सर आ चुके हैं मैं उनको आपको पढ़कर सुनाऊंगा इस गाने के बाद।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और आज के हमारे खास मेहमान आज के शो में कर्नल कंवर भारद्वाज सेना मेडल से सम्मानित वॉर वेटरन हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम उनकी कहानी सुनकर के खुद भी जोश से अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हैं। सर यहाँ पर मैं आपसे जो भी अभी अब तक मैंने बात की आपके बारे में बात की लेकिन सर एक ऐसी एक शहीद की बात भी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी देश के लिए बलिदान दिया जान की आहुति दी और वो थे कैप्टन उमंग भारद्वाज आपके सुपुत्र जिनको उनके साथी प्यार से टाइगर बुलाया करते थे। तीन सक्सेसफुल ऑपरेशंस उन्होंने किए जिन तीन ऑपरेशंस में उन्होंने 15 ड्रेडेड टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके बाद चौथा ऑपरेशन था वो एम्बुश था 18 और 19 नवंबर 2002 की मिडिल नाइट में। उस दौरान सर 6 टेररिस्ट मार गिराए गए जिनमें से 2 को अकेले उमंग भारद्वाज ने ही मौत के घाट उतारा और सर उसी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बलिदान दिया शहीद हुए वो और उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। सर वो मोमेंट था एक प्राउड मोमेंट भी था लेकिन बहुत ही यंग एज थी उनकी जब उन्होंने शहादत पाई और टेररिस्ट का मुकाबला करते हुए उनको मार गिराया और अपनी भी जान की आहुति दी देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर कैसे याद करते हैं आप?
1: ओह माय गॉड कैसे याद करते हैं, जैसे उसका नाम था ना उमंग
0: जी,
1: ही वाज ऑलवेज ए लाइव वायर आई टेल यू, ये मेरे लाइफ का वो इतना चाहता बेटा था
0: जी।
1: ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, ही वाज माय बेस्ट गाइड, ही वाज माय बेस्ट फादर एडवाइजर व्हाट सो यू कॉल बिकॉज इट हैपन्ड सो कि वो बड़े भाई से 7 साल छोटा था।
0: अच्छा।
1: जो उस समय मेजर थे और एनएसजी में इंस्ट्रक्टर थे मेजर राजेश भारद्वाज
0: जी
1: और सबसे बड़ी सिस्टर जो है उनकी वो डॉक्टर सविता है।
0: अच्छा।
1: सो उमंग वाज फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम एंड वी नेवर वांटेड टू सेंड हिम टू आर्मी बट ही गॉट सिलेक्टेड इन रिटर्न एंड देन ही वाज टू गो फॉर एसएसबी। दैट टाइम आल्सो माई सेल्फ और मेरी और उसकी मम्मी शिक्षा भारद्वाज ने काफी कोशिश की कि हम इसको नहीं भेजें बट उसने हमारे को परस्यू करके और उस लाइन पे ले आए कि नहीं मेरे को फौज में जाना है और मैं पहले जाता हूँ एसएसबी में, अभी हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखते हैं कितना दम है हमारे अंदर। तो वहाँ एसएसबी में गया एंड ही गॉट सिलेक्टेड बिकॉज पहले तो बोला था मैं ठीक है 5 साल के लेगा जाएंगे तो शॉर्ट सर्विस में चले जाएंगे एंड ही गॉट इन मेरिट एंड ही गॉट रेगुलर टू ज्वाइन सीएसडी आईए में ज्वाइन करके।
0: अच्छा।
1: तो कमांड डिफेंस सर्विस ज्वाइन क्लियर करके और एसएसबी वगैरह क्लियर करके आईए में से पास आउट हो गया। दैट टाइम आई ट्राई टू गेट हिम इन द एएससी और एओसी।
0: अच्छा।
1: सो दैट टाइम आई वेंट टू आर्मी हेडक्वार्टर one of the officer over there with my friend I had gone to him and I said ki bhai beta pass ho raha hai to major Hudda was there
0: ji
1: he said ki sir usko hum armored corps to aur mechanized infantry nahi de payenge Rajdev de dete hain। I told him main keh raha hu mere pe ehsaan nahi kar rahe aap
0: bilkul
1: theek hai to उसको मैं क्या हमने राजीव नहीं चाहिए उसको तो राजीव तो उसका बाप है उसका भाई है तो उसका पेरेंटल हक है वो तो मिलेगा बट वी वांट हिम टू गो टू नेवी व्हाट यू कॉल एएससी और एओसी बिकॉज दैट टाइम देयर वाज सम हिच इन माय माइंड एंड माय वाइफ माइंड कि इसको कहीं खतरा है पता नहीं क्यों ऐसा ही पहले लग रहा था।

0: लेकिन सर उस उनमें उमंग में आपका वाला ही वो जोश था, अपने पिताजी का वो जोश और जज्बा, इसीलिए उनके साथ उनको टाइगर कहकर
1: आई एम
0: पुकारते थे
1: कमिंग टू दैट वन. तो
0: जी.
1: उसको व्हेन ही पास्ड आउट एंड व्हेन ही केम टू नो कि ये मेरे को एसी मिली है,
0: जी
1: तो मैंने वो उसको वो फ़ोन पे बड़ी मुश्किल से बातचीत किया एंड ही
0: जी
1: वॉज क्राइंग ऑन फोन कि डैड मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया, वाई यू गॉट मी इन एसी. आई सेड बेटे आपको 3 साल मिलेंगे अटैचमेंट के लिए, उसमें आप हमारी राजदीप मेरी पलटन के साथ या भैया की पलटन के साथ में आप अटैचमेंट पे आना. अगर आपको राजदीप ही चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, अदरवाइज मैं क्या राजरिप अगर मिल जाती है या इन्फेंट्री मिल जाती है उससे बाहर निकलना मुश्किल होगा. सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट फ्रॉम देयर एंड वी वॉन्ट टू यू जज अबाउट योर सेल्फ.
0: जी
1: ही सेड नथिंग डूइंग एंड मेरे ऊपर कोई मेहरबानी मत करना भी, जहाँ मेरी पोस्टिंग आती है मेरे को जाने दीजिए.
0: अच्छा
1: ही ज्वाइन 7 जाट एंड 7 जाट के अंदर गया
0: जी
1: तो ही वॉज पोस्टेड इन महेंद्र सेक्टर एंड नाउ कमिंग टू द ऑपरेशंस. ही
0: अच्छा
1: वॉज सच ए जॉली फेलो एंड फुल ऑफ जोश ऑफ द टाइम. ही
0: बिल्कुल
1: कंडक्टेड 3 ऑपरेशन विच यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट
0: जी
1: और 3 ऑपरेशन के अंदर उसने 5 मार दिए थे.
0: जी
1: इसमें एक इंसिडेंट और बताऊंगा,
0: जी
1: एक डी के साहा उसी कोर्समेट, ही वॉज ऑल्सो विद द 7 जाट एंड देर इज ए घातक प्लाटून.
0: जी जी
1: तो दिस बॉय उमंग वॉज डूइंग घातक प्लाटून कमांडर फॉर 1 ईयर एंड ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन ही हैज किल्ड 15 टेररिस्ट
0: जी
1: एंड दीज 4 ऑफिसर दोज ज्वाइन टुगेदर 7 जाट दे हैड टेकन ए सॉर्ट ऑफ प्लेज दैट जब तक हमारी पलटन यहाँ है और हम यहाँ पर हैं
0: जी
1: कोई टेररिस्ट हमारे एरिया से
0: जिंदा नहीं जा सकेगा,
1: जिंदा नहीं जा सके, अंदर घुस नहीं
0: घुस
1: सकेगा.
0: नहीं सकेगा.
1: एंड दैट ही डिड. कैप्टन डी के झा सेक्रीफाइस्ड अबाउट 2.5 मंथ्स अर्लियर देन दैट इन दैट सेम एरिया
0: अच्छा
1: एंड उमंग वॉज डूइंग एडजुटेंट. उमंग टोल्ड मी इन द नाइट अराउंड मिड नाइट,
0: जी
1: ही टोल्ड मी दैट डैड डी के इज नो मोर. आई से व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, बोलते वो तो छोड़ो मेरे से ऊपर क्या गुजर रही है. वट उसके ब्रदर हैं दिल्ली के अंदर एंड हिज बॉडी विल बी कमिंग टू एयरपोर्ट एंड उसके ब्रदर को आपके उसके साथ भेजना पड़ना एंड नेक्स्ट नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 आई विल कॉल यू एंड गिव मी रिपोर्ट. दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर फॉर माई यंगर सन इन द ब्रेव बॉय. एंड नेक्स्ट आई डिड ऑल द थिंग्स बिकॉज ही टोल्ड मी कि उसके पास पैसा नहीं होगा, उसकी टिकट वगैरह कर दीजिए और डेड बॉडी के साथ वो उधर से लेके जाएंगे उसे. सो दैट वॉज डन. देन
0: जी
1: उमंग का जो बताया ऑपरेशन,
0: जी
1: ही वॉज डूइंग एडजुटेंट फॉर 2 ईयर्स. ही वॉज पोस्टेड आउट, पोस्टिंग आ चुका था. ही केम ऑन
0: जी
1: 10 डेज लीव एंड 10 डेज लीव के वापस जब वापस गया सो ही रीच देयर ऑन द 17th इवनिंग
0: जी
1: और रादर 18th इवनिंग,
0: जी 18th और 19th
1: 18th इवनिंग
0: जी
1: ही रीच देयर एंड ही वॉज देयर टू हैव हिज फेयरवेल पार्टीज एंड ऑल दैट एंड पिकअप ए ट्रॉफी एंड गेट आउट फ्रॉम द बटालियन डूइंग गुड जॉब. दैट टाइम देर वॉज सम इंफॉर्मेशन ऑन न्यूज एंड ऑल दैट दैट देर आर सम टेररिस्ट दोज हुआ क्रॉसिंग द बॉर्डर. सो ही वेंट टू द CO एंड रिक्वेस्टेड हिम दैट आई वॉन्ट टू गो फॉर द ऑपरेशन. तो CO टोल्ड हिम नो, यू सेंड समबडी, यू विल नॉट
0: अच्छा
1: गो, यू आर ऑलरेडी पोस्टेड आउट एंड यू आर यू हैव टू गो, दैट इज इनफ फॉर यू. सो दिस बॉय इंसिस्ट ऑन हिम एंड द थर्ड टाइम ही गॉट रेडी टूक सम पीपल विद हिम एंड वेंट फॉर द ऑपरेशन हिमसेल्फ. देन CO वार्न्ड हिम दैट गो अप टू सो एंड सो लोकेशन एंड कंडक्ट द ऑपरेशन, टेक
0: जी
1: केयर, अपना ध्यान रखो.
0: जी
1: बट दिस बॉय फुल ऑफ जोश एंड
0: और
1: वेन
0: ये
1: ही वेंट विद द एम्बुस पार्टी एज एम्बुस कमांडर,
0: जी
1: ही पुट द एम्बुस ओवर देयर एंड अलाउड द 6 टेररिस्ट टू गेट इन टू द एम्बुस एंड देन ही ओपन द फायर. फर्स्ट टेररिस्ट वॉज किल्ड बाई हिज फायर, देन अदर पीपल पर्सन एंगेज द एम्बुस टेररिस्ट. वन टेररिस्ट वॉज रनिंग बैक टूवर्ड्स द
0: अच्छा
1: ढारा, वन ऑफ द जो ढारा इज द खंडर टाइप ऑफ मकान इन
0: जी
1: द
0: जी जी
1: पहाड़ों में
0: जी
1: जिनमें डंगर उंगर बांधते हैं, तो उसमें वो शेल्टर लेने के लिए भाग रहा था. उमंग रेन पैरल टू हेम एंड शॉट एट हेम ऑल्सो. उमंग ऑल्सो गॉट ए शॉट फ्रॉम साइड फ्रॉम दिस फेलो और एनी टेररिस्ट दोज हु आर स्टिल अलाइव
0: ये
1: एंड
0: अभी
1: दिस.
0: आम

0: सामने की लड़ाई थी उस
1: आमने
0: टेररिस्ट के
1: सामने
0: साथ।
1: फ्रॉम 6 मीटर इट सेल्फ
0: अच्छा
1: ईच अदर शाउटेड एट ईच अदर एंड
0: जी
1: ही सेड
0: जी
1: काफिर एंड ऑल दैट ही सेड ब्लडी फूल आई विल किल यू एंड ही शॉट हिम डाउन ओवर देयर एंड ही टोल्ड हिज ऑपरेटर के रामकिशन अपने सीओ साहब को बोलो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है जवानों को फायर जारी रखे कोई बच के नहीं जाना चाहिए और मेरे शायद कहीं लग गई है बाई
0: अच्छा
1: दैट टाइम द ऑपरेटर अप्रोच देम उमंग वॉज नो मोर
0: अच्छा
1: सो
0: तो उस मोमेंट पर उमंग भारद्वाज ने शहादत पाई उस ऑपरेशन के दौरान।
1: जी
0: 6 टेररिस्ट जो मारे गए,
1: दिस
0: जिसमें
1: टाइम
0: दो को
1: 15 15 पहले मार चुके थे छह ऐसे
0: जी
1: मारे
0: छह इस
1: टोटल
0: ऑपरेशन में
1: ट्वेंटी
0: मार
1: वन टेररिस्ट
0: जी। तो आज हम शौर्य चक्र से सम्मानित मरणोपरांत कैप्टन उमंग भारद्वाज को याद करते हैं, उनकी बहादुरी, उनकी वीरता, उनके शौर्य के लिए, अदम्य साहस के लिए। सर, हम यहाँ पर, समय बहुत कम बचा है, मैं चाहूँगा कि जो मैसेजेस हमारे पास बहुत समय से आ गए थे उनको मैं आपको पढ़ करके बताऊँ।
1: जी
0: गुड आफ्टरनून का मैसेज है हितेंद्र दास का असम से आपके लिए, और उसके बाद ये मैसेज है, गुड आफ्टरनून टू कर्नल रिस्पेक्टेड सर एन आर जे सर, आई एम राइटिंग फ्यू वर्ड्स टू आर इंडियन आर्मी। आई बो माई हेड विद इमेंस रिस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर आर बिलवड इंडियन आर्मी। यू प्रोटेक्टेड आर बॉर्डर्स विद अनवेवरिंग करेज, यू सर्व द नेशन विद सेल्फलेस डेडिकेशन, एंड यू इंस्पायर एवरी इंडियन विद योर सेक्रीफाइसेस। बिकॉज ऑफ यू वी लिव इन फ्रीडम एंड पीस, सो एंटायर नेशन इज फॉर एवर इंडेबटेड टू यू इंडियन आर्मी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये हैं सर शंकर लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से।
1: थैंक यू वेरी मच
0: और आर्मी ऑफिसर को और आरजे सर को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। यशवंत आडमुटे धाराशिव हैं सर, ये महाराष्ट्र से, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। भारद्वाज साहब से मिलने में बहुत खुशी है जी। वेलकम टू द शो। श्रीकांत हैं सर, ये टोल गेट त्रिची तमिलनाडु से,
1: वी आर
0: और
1: ऑल्सो
0: ये
1: वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम थैंक
0: जी
1: यू वेरी मच
0: चरण कुमार हैं सर, ये सन ऑफ श्री ब्रिजेश कुमार, विलेज बरकतपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, स्टेट यूपी से। और कर्नल भारद्वाज जी को मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत, ये कह रहे हैं आपको सर।
1: हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत उन सबको हमारे साथियों को सबको आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक
0: जी, और सर हैं ये शांतचारा बादीगार कोकानूर हरिहार से, देवनागरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। रिस्पेक्टेड सर, संदेश टू सोल्जर इज अ वेरी मीनिंगफुल एंड हार्ट टचिंग प्रोग्राम। यू प्रेजेंट इट ब्यूटिफुली, रिमाइंडिंग अस ऑफ द सेक्रीफाइसेस, सर्विसेज, करेज एंड पैट्रियटिज्म ऑफ ब्रेव सोल्जर्स हु प्रोटेक्ट अवर नेशन डे एंड नाइट एट द बॉर्डर्स। सोल्जर्स स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्रीमैन। देयर डेडिकेशन एंड सेल्फलेस सर्विसेज आर ट्रूली कमेंडेबल सर, ये कह रहे हैं। हार्ट वेल थैंक्स टू यू फॉर ब्रिंग सच अ मीनिंगफुल प्रोग्राम टू अस। थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना और आपने हमें मैसेज किया। और हैं सर ये कर्नल कमर भारद्वाज जी, जय हिंद। 71 आमने सामने के वार का विवरण सुनकर मन उत्साह से भर गया है। कमर जी का आज भी वही जज्बा महसूस हो रहा है सर, आपकी बात सुनकर के ही कह रहे हैं
1: थैंक यू सो मच
0: जी। और नाम शुभ संध्या, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, शायद राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से हैं ये। और ये है मैसेज, नमस्कार मेरठ से वीरू बख्शी, आपके टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी मेहनत करी आपने, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना। जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। और भी सर बहुत सारे मैसेजेस हैं और समय
1: ओके
0: बहुत कम हमारे पास बचा है
1: अभी
0: ये
1: अभी कुछ एक बार पूछ लो और ना
0: जी सर। अब हम मैसेजेस बहुत सारे, मैं सब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय है बहुत कम हमारे पास। मैं सर बस चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपकी और आपके जो फैमिली है उसका किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, अब आप किन चीजों में इन्वॉल्व हैं सर रिटायरमेंट के बाद।
1: इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद में हमने एक स्कूल खोला था
0: जी
1: बाय द नेम ऑफ कर्नल पब्लिक स्कूल
0: कर्नल
1: माना
0: पब्लिक
1: हुआ पब्लिक स्कूल है
0: जी
1: सीबीएसई 10+2
0: जी
1: एंड आवर वॉलीबॉल टीम हैव बीन अंडर 19 अंडर 17
0: जी
1: नॉट ओनली नेशनल चैंपियन इंटरनेशनल चैंपियन
0: जी
1: एंड आई हैड ए हॉस्टल ऑल्सो इन द स्कूल इटसेल्फ फॉर द
0: जी
1: बॉयज
0: जी आज सब आप सोशल सर्विसेज में भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों की मदद करते हैं और आप जो लोग होते हैं जिनको मदद चाहिए सोशल सर्विसेज में, आप भी और आपका परिवार भी इसमें
1: सोशल सर्विस के उमंग के जाने के बाद में
0: जी
1: हमने अपना ध्यान लगाया सोशल सर्विस एंड अदर थिंग्स के अंदर, जिसके अंदर के
0: जी
1: वन ट्रैक वन पेंशन

0: ये
1: अच्छा
0: हमारा पूरा फाइट था और
1: जी
0: आज हमारे पुराने फौजियों को, खास करके वार विडोज एंड विडोज को
1: जी
0: जो
1: जी
0: फायदा मिला है और हम सबको, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: और सर उसमें आपने
0: दूसरा,
1: पूरी मेहनत की उसको
0: उसमें सारा जो प्रोटेस्ट था, बहुत आई वॉज लीडिंग वन एंड
1: जी,
0: ऑल द प्रोटेस्ट वॉज
1: और उसमें सर
0: कैरिड
1: कामयाबी
0: मी माई
1: मिली
0: वाइफ
1: जी
0: एंड मिस जाखड़ इज वाइफ।
1: जी
0: एंड दूसरा एक मैंने बहुत बड़ा ये टोल का यहाँ पे होता था बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव,
1: अच्छा
0: MBS मॉल के पास में,
1: जी जी
0: जहाँ दो दो ढाई ढाई घंटे
1: ट्रैफिक
0: ट्रैफिक जैम
1: रहता था,
0: होता
1: जाम
0: था
1: होता था
0: और इवन एम्बुलेंस और प्रेग्नेंट वुमेन वर
1: जी
0: नॉट एबल टू गेट थ्रू, एंड इन दैट वी आई वॉज एबल टू गेट इट रिमूव्ड
1: जी
0: परमानेंटली फ्रॉम दैट
1: आपने ये
0: प्लेस
1: सब काम किए और
0: बिकॉज ऑफ
1: अब भी आप लगे रहते हैं कुछ ना कुछ
0: बिकॉज
1: करते
0: ऑफ
1: रहते हैं।
0: मोटिवेशन ऑफ उमंग एंड माई
1: बिल्कुल
0: सेल्फ इज फुली आई बीन इन्वॉल्व इन ऑल दी थिंग एंड
1: बिल्कुल सर,
0: डिवोटेड टू व्हाट्स एवर मैक्सिमम आई कैन डू आई मस्ट डू टिल आई एम एबल टू डू समथिंग।
1: बिल्कुल सर, बहुत ही जोश भरी आपसे हमने बातें की आज, और हमने याद भी किया कैप्टन उमंग भारद्वाज को भी, जिनको शौर्य चक्र से नवाजा गया मरणोपरांत उनकी बहादुरी के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए, कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल सम्मानित, 1971 वॉर वेटरन। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो
0: आपका
1: में
0: भी
1: शामिल
0: बहुत
1: होने के
0: बहुत
1: लिए।
0: धन्यवाद, आपको और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।
1: भारत माता की जय, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, आपने हमें अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे। और 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो पर प्रोग्राम जारी रहेंगे, आगे है सेटेलाइट्स, मीना के साथ शायद को दें इजाजत।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: नमस्कार।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो सीढ़ी में 9:30 हो चुके हैं। अब वक्त हो आ जाता है उर्दू प्रोग्राम नए रंग्स का।

0: हसबेंदोस्तूर, आज आप समाप्त कर सकेंगे मुशायरा जिसमें आपको अपना कलाम पेश सुनाएंगे आगा सरोश समीउल्ला समी जामिन अली मुसर्रत। इसके बाद दोस्तों, आपका पसंदीदा प्रोग्राम जो कि फिल्मी नगमों पर मबनी रहेगा, गीत सुरे लगाते जा में आप पसंदीदा नगमे समाप्त कर सकेंगे। और आखिर में पयामे शब से आज के उर्दू प्रोग्राम नए रंग का इख्तिताम होगा। आगाज पर समाप्त कीजिए हर्फ ताबिंदा, तहरीर और पेशकश है मोहतरमा आयशा बतुल की।
1: इंसान की शख्सियत वो आईना है जो उसके ख्यालात, आमाल और आदात की अक्कासी करता है। एक मजबूत और मौसर शख्सियत ना सिर्फ जिंदगी में कामयाबी की जमानत बनती है बल्कि दूसरों पर भी मुस्बित असर डालती है। शख्सियत की नशोनुमा में कई पहलू अहम किरदार अदा करते हैं, उनमें सबसे पहले आता है खुद आगाही। शख्सियत की नशोनुमा का पहला और अहम कदम खुद आगाही है। इंसान को अपनी कुव्वतों, कमजोरियों, ख्वाबों, मकासद और जज्बात को पहचानने की जरूरत होती है। जब हम अपने आप को समझते हैं तो अपने अमल को मौसर तरीके से मुनज्जम कर सकते हैं। दूसरा पहलू है मुस्बित सोच। मुस्बित सोच इंसान की शख्सियत को मजीद निखारती है। मनफी ख्यालात से बचने की कोशिश करते रहने चाहिए और जिंदगी में हमेशा रोशन पहलू देखने की आदत डालनी चाहिए। मुश्किलात को चैलेंज के तौर पर कबूल किया जाना चाहिए और उनसे सीखने का मौका हासिल करना चाहिए। तीसरा और इंतहाई अहम पहलू है मुताला। किताबें इंसान की शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छी किताबें पढ़िए, चाहे अखलाकियात की किताबें हों या फिर किसी मखसूस मौसू पर मबनी किताबें। मुताले से ना सिर्फ इल्म में इजाफा होता है बल्कि शख्सियत की गहराई और वसत में भी इजाफा होता है। समाजी ताल्लुकात भी शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। शख्सियत की नशोनुमा के लिए समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना ज़रूरी है। दूसरों से मेलजोल रखना चाहिए, उनके ख्यालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी बातों को सलीके से पेश करना चाहिए। समाजी ताल्लुकात की मजबूती से इंसान की खुद एतमादी में इजाफा होता है। चौथा अहम पहलू है खुद एतमादी। ये शख्सियत का अहम जुज है। अपने आप पर यकीन रखना चाहिए, अपनी सलाहियतों पर एतमाद होना चाहिए, क्योंकि खुद एतमादी की कमी इंसान को जिंदगी के मौके से महरूम कर सकती है। इंसान का मुस्तकिल मिजाज होना भी ज़रूरी है। मुस्तकिल मिजाजी और तहम्मुल ही होते हैं जो इंसान की शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। किसी भी हदफ को हासिल करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। मुस्तकिल मिजाजी से इंसान को मुश्किलात का सामना करने का हौसला मिलता है। मुस्बित आदत का होना भी ज़रूरी है। अच्छी शख्सियत के लिए मुस्बित आदतें अपनानी चाहिए, जैसे कि सुबह की सैर की जाए, वर्जिश की जाए, मतवाजन ग़िज़ा और मुताले की आदत डाली जाए। इन तमाम से शख्सियत में बेहतरी आती है। मुस्बित आदतें इंसान को ताजगी और तवन्नाई फराहम करती हैं। शख्सियत की नशोनुमा के लिए अमली महारतें भी अहम हैं। कोई नया हुनर सीखा जाए, चाहे वो खाना पकाना हो, मौसीकी बजाना हो या फिर कोई नई जबान सीखना हो। अमली महारतें इंसान की खुद एतमादी में इजाफा करती हैं और उसे नया तजुर्बा हासिल करने का मौका फराहम करती है।

0: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेकू बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
1: यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस रेडियो सी घड़ी में 9:38 हो चुके हैं। सामईन आइए आगे बढ़ते हैं, लीजिए समाप्त कीजिए इस महफिल का अगला प्रोग्राम मुशायरा, जिसमें आपको अपना कलाम सुनाएंगे आगा सरोश समी उल्ला समी जामिन अली हसरत। लीजिए समाप्त कीजिए।
2: सामईन मोहतरम, ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद की जानिब से मुनक्किदा इस खुसूसी मुशायरे में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आज के इस खुसूसी मुशायरे में शहर हैदराबाद के मुमताज़ व मारूफ शरा शिरकत फरमा रहे हैं, जिनके इस्माए ग्रामी हैं समीउल्ला समी, डॉक्टर जामिन अली हसरत, आगा सरोश। आइए मैं इस मुशायरे का आगाज़ करने के लिए शहर के मारूफ शायर समीउल्ला समी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें।
3: मौजूद सामईन, आपकी खिदमत में गज़ल पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। अर्ज़ किया है कि उल्फत को हमने रख लिया नफ़रत निकाल के, उल्फत को हमने रख लिया नफ़रत निकाल के, नफ़रत के सांप रखे नहीं दिल में पाल के, मंजर बदल गए हैं पुराने ख्याल के, मंजर बदल गए हैं पुराने ख्याल के, किरदार मस्क हो गए शीशे में हाल के, देखे हैं दौर हमने उरूजो जवाल के, देखे हैं दौर हमने उरूजो जवाल के, रखते हैं इसलिए ही कदम हम संभाल के। मतलब है कि कासे में अपने हमने किनात को डाल के, कासे में अपने हमने किनात को डाल के, इज्जत को अपनी रखा है हमने संभाल के। आखिरी मतला है गज़ल का कि लाया हूँ मोती हुस्न का दरिया खंगाल के, लाया हूँ मोती हुस्न का दरिया खंगाल के, तरकीम करने तेरे कसीदे जमाल के। शेर है कि गिरता नहीं कभी मैं बुलंदी से इसलिए, गिरता नहीं कभी मैं बुलंदी से इसलिए, रखता हूँ साथ अपने मैं जीने जवाल के। शेर है कि दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, दौलत का पेड़ सूख

0: ही सारे उड़ गए, अहबाब सारे गोया के पंछी थे डाल
1: डाल
0: के।
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: दौलत का
1: वाह
0: पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए,
1: बहुत अच्छा
0: दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, अहबाब सारे गोया के पंछी थे डाल
1: क्या
0: के।
1: कहने क्या कहने
0: शेरे के नादा कहा किसी ने तो पागल कहा कोई,
1: क्या बात है
0: नादा कहा किसी ने तो पागल कहा कोई। तोहफे मिले हैं हमको ये सिदके मकाल के, तोहफे मिले हैं हमको ये सिदके मकाल
1: सिदके
0: के।
1: मकाल की बात कहने फिर सुनाइए वाह वाह वाह
0: नादा कहा किसी ने तो पागल कहा कोई, तोहफे
1: वाह
0: मिले हैं हमको ये सिदके मकाल के।
1: क्या बात है
0: शेर है कि आखिरी शेर है मकते से पहले कि खैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों,
1: क्या बात है वाह वाह
0: खैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों, खैरात हमने दी नहीं सिक्का उछाल के,
1: क्या बात है
0: खैरात हमने दी नहीं सिक्का
1: क्या बात है
0: उछाल
1: बहुत
0: के,
1: खूब
0: खैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों, खैरात हमने दी नहीं सिक्का उछाल के। मकता कुछ यूं है कि कैसे मिलेगा दिल का सुकून अब हमें समी,
1: जी
0: कैसे मिलेगा दिल का सुकून अब
1: हमें
0: हमें समी,
1: समी वाह
0: मिलते नहीं जो आज निवाले हलाल के, मिलते नहीं जो आज
1: बहुत
0: निवाले
1: अच्छे से बहुत
0: हलाल
1: अच्छा
0: के।
1: बहुत खूब
0: दूसरी गजल के चंद
1: इरशाद
0: शेर पेश कर
1: जी
0: रहा हूँ।
1: जी
0: मतलब है
1: इरशाद
0: कि आई ने कभी झूठी वजाहत नहीं करते,
1: वाह
0: आई ने कभी झूठी वजाहत नहीं करते, दागों को छुपाने की हिमाकत नहीं करते,
1: वाह
0: दागों को छुपाने की हिमाकत नहीं करते। उसने मतलब है कि भूले से हमारी वो शिकायत नहीं करते,
1: क्या बात
0: भूले से हमारी वो शिकायत नहीं करते। अफसोस क्या वो हमसे मोहब्बत नहीं करते, अफसोस क्या वो हमसे मोहब्बत नहीं करते। आखिरी मतलब है
1: अफसोस
0: कि
1: क्या क्या
0: एहसास
1: हमसे
0: से
1: मोहब्बत नहीं
0: कनाअत की
1: करते
0: बदौलत नहीं करते,
1: हाँ
0: एहसास से कनाअत की बदौलत नहीं करते, हम अपनी मुसीबत की सराहत नहीं
1: क्या
0: करते,
1: बात है
0: हम
1: वाह
0: अपनी मुसीबत की सराहत नहीं करते। शीशे की तरह साफ जो रखते हैं दिलों को,
1: वाह
0: शीशे की तरह साफ जो रखते हैं दिलों को, गीबत की कभी उन पे तबाहत नहीं
1: वाह
0: करते, गीबत की
1: वाह
0: कभी उन पे तबाहत नहीं
1: वाह
0: करते।
1: वाह
0: शेरे के बाजारे मोहब्बत में मियाँ सूद और जियाँ क्या,
1: वाह
0: बाजारे मोहब्बत में मियाँ सूद और जियाँ क्या,
1: वाह
0: हम इश्क की दुनिया में तिजारत नहीं करते,
1: बहुत खूब
0: हम
1: बहुत
0: इश्क की
1: अच्छे
0: दुनिया में तिजारत नहीं
1: वाह
0: करते। मकता है कि अच्छों की समी अपनी ही पहचान अलग है, अच्छों की समी अपनी ही पहचान अलग है, वो
1: वाह
0: लोग कोई पैदा मुसीबत नहीं करते,
1: क्या बात
0: वो
1: वाह
0: लोग
1: बहुत
0: कोई पैदा मुसीबत नहीं करते।
1: वाह
0: आईने कभी झूठी वजाहत नहीं करते, दागों को छुपाने की हिमाकत नहीं करते।
1: वाह वाह वाह
0: कुछ गजल के कुछ
1: इरशाद
0: मतलब और कुछ शेर समाप्त कीजिएगा कि मतलब कि वो दौर जिसमें था भाईचारा, वो दौर
1: वाह
0: जिसमें था भाईचारा है गम हमें के गुजर गया वो दौर जिसमें था भाईचारा है गम हमें के गुजर गया वो, थी जिसमें इंसानियत वो इंसान सुना है हमने के मर गया वो,
1: क्या बात है
0: सुना है हमने के मर गया वो। लुहू लुहू है हर एक मंजर है आस्तीने वफा में खंजर,
1: वाह
0: लुहू लुहू है हर एक मंजर है आस्तीने वफा में खंजर, अगर ना उतरा ये पीठ में तो समझ लो दिल में उतर
1: उतर
0: गया,
1: गया बहुत
0: समझ लो दिल में
1: बहुत
0: उतर
1: अच्छा
0: गया वो।
1: क्या बात
0: लुहू लुहू है हर एक मंजर है आस्तीने
1: क्या
0: वफा
1: बात
0: में
1: वाह
0: खंजर, अगर ना उतरा ये पीठ में तो समझ लो दिल में उतर गया वो। ये शोहरतों की अजीब रुत है, ये शोहरतों की अजीब रुत है इसमें जो भी अना में धुत है,
1: क्या बात क्या
0: ये
1: बात
0: शोहरतों की अजीब रुत है इसमें जो भी अना में धुत है, बदल बदल कर ये वक्त चेहरा सुना के ऐसी खबर गया
1: अरे
0: वो,
1: बहुत अच्छा
0: बदल बदल
1: वाह
0: के ये वक्त चेहरा सुना के ऐसी खबर
1: बहुत
0: गया
1: अच्छा
0: वो। अकेला शेर है कि अकेला खतरों से खेलता था, गमों को तन्हा जो झेलता था, अकेला खतरों से खेलता था, गमों को तन्हा जो झेलता था, जब आई बच्चों की बात उसके कुछ ऐसा टूटा बिखर गया
1: अरे
0: वो,
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा
0: जो जहाँ से निकला तो भीगी आंखें, जो जहाँ से निकला तो भीगी आंखें, जुमा पे आया तो होंठ कांपे, ये दर्द ऐसा था बेबसी का दिलों पे करके असर गया वो।
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा
0: आखिरी शेर है कि सफर में झूठ और मसलहत के जमीर आया ना साथ मेरे,
1: वाह
0: जहां से मैंने कदम बढ़ाया उसी जगह पर ठहर गया वो,
1: क्या बात
0: वाह
1: क्या
0: जहां
1: वाह
0: से मैंने कदम बढ़ाया उसी जगह पर ठहर गया वो। मकता है कि समी पौधे लगा वो जिनके, घने हो साए समर हो मीठे, समी

0: पौधे लगाओ जिनके घने हो साए, समर हो मीठे, जो याद कर ले तुझे तो बोले लगा के अच्छे शजर गया वो।
1: बहुत
0: बहुत बहुत
1: वाह
0: शुक्रिया
1: समी ने
0: समी।
1: मोहतरम। अभी आप समीउल्लाह समी साहब को सुन रहे थे। अब डॉक्टर जामिन अली हसरत से उनका कलाम समाप्त फरमाइए। डॉक्टर जामिन अली हसरत।
2: गजल का एक मतलब दो शेर मुलाजा करेंगे। दोस्ती की जो हरदम दुहाई देता है, दोस्ती की जो हरदम दुहाई देता है,

0: दोस्ती की जो हरदम दुहाई देता है, दोस्ती की जो हरदम दुहाई देता है, वो दोस्त होके भी दुश्मन दिखाई देता है।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह,
0: दोस्ती की जो हरदम दुहाई देता है, वो दोस्त होके भी दुश्मन दिखाई देता है। सुने हैं चर्चे बहुत उसकी भी सखावत के, रो भाई,
1: बहुत अच्छा,
0: सुने हैं चर्चे बहुत उसकी भी सखावत के,
1: वाह
0: पहाड़ लेके जो बदले में राई देता है,
1: बहुत अच्छा,
2: वाह
0: पहाड़ लेके जो बदले में
1: वाह
0: राई देता है।
1: वाह,
0: पसीना जब भी मैं बहाता हूँ बूंद बूंद अपना, पसीना जब भी मैं बहाता हूँ बूंद बूंद अपना, अजर में मेरा खुदा पाई पाई देता है,
1: वाह बाबा, क्या
0: अजर
1: बात,
0: में मेरा खुदा पाई पाई देता है। एक गज़ल के दो चार शेर मुलाजा करें कि गज़ल का मतलब है, गुलहाए बंदगी दिले कमतर में डाल दे, गुलहाए बंदगी दिले कमतर में डाल दे, मालिक जुनून इश्क मेरे सर में डाल दे।
1: बहुत अच्छा,
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: बहुत खूब, वाह वाह
0: गुलहाए
1: वाह
0: बंदगी दिले
1: वाह,
0: कमतर में डाल दे,
2: वाह
0: मालिक जुनून इश्क मेरे सर में डाल दे। शेर मुलाजा करेंगे, तस्वीर तू बनाता है मेरे लहू से जब,
1: वाह,
0: तस्वीर तू बनाता है मेरे लहू से जब, जलता हुआ मकान भी मंजर में डाल दे।
1: बहुत अच्छा है, बहुत
0: वाह
1: अच्छा,
0: जलता हुआ मकान भी मंजर
1: मंजर
0: में
1: में डाल
0: डाल
1: दे,
0: दे।
1: वाह
0: शेर मुलाजा करें, रो भाई के,
1: जी,
0: या तो चमन में फूल की सूरत इन्हें खिला,
1: हाँ
0: या तो चमन में
1: फूल की सूरत,
0: फूल की सूरत इन्हें खिला,
1: वाह
0: या मेरे आंसुओं को समंदर में डाल दे।
1: बहुत
0: वाह
1: अच्छा, बहुत
2: वाह
1: अच्छा, बहुत खूब,
0: या तो चमन में फूल की सूरत इन्हें खिला,
1: वाह
0: या मेरे
1: वाह
0: आंसुओं
1: वाह,
0: को समंदर में डाल दे।
1: वाह वाह वाह
0: शेर
1: वाह,
0: मुलाजा करें कि फूलों की पत्तियों को मिली है नमी मगर,
1: वाह
0: फूलों की पत्तियों को मिली है नमी मगर, शबनम का सारा दर्द गुले तर में डाल दे।
1: वाह वाह वाह,
0: फूलों की पत्तियों को मिली है नमी
1: बहुत अच्छा,
0: मगर,
1: वाह वाह
0: शबनम का सारा दर्द गुले तर में डाल
1: वाह
0: दे।
1: वाह, क्या बात,
0: नींदे मेरी महकती रहेंगी तमाम उम्र। शकील भाई
1: जी
0: मुलाजा करें कि नींदे मेरी महकती रहेंगी तमाम उम्र, यादों के फूल ला मेरे बिस्तर में डाल दे।
1: बहुत अच्छा,
2: वाह
1: अच्छा,
0: नींदे मेरी महकती
1: वाह
0: रहेंगी
1: वाह
0: तमाम उम्र,
1: वाह,
0: यादों के फूल ला
1: मेरे
0: मेरे
1: बिस्तर में
0: बिस्तर में
1: डाल दे,
0: डाल
1: बहुत
0: दे।
1: अच्छा,
0: सरोज साहब मख्ता मुलाजा करें कि हीरे
1: बिस्मिल्लाह,
0: जवाहरात की हसरत नहीं मुझे,
2: वाह
0: हीरे जवाहरात की हसरत नहीं मुझे,
1: वाह
0: मोती सुकून दिल के मेरे घर में डाल दे।
2: वाह
1: वाह
0: हीरे जवाहरात की हसरत नहीं मुझे,
1: वाह
0: मोती सुकून दिल के मेरे घर में डाल
1: वाह
0: दे,
1: वाह,
0: गुलहाए बंदगी दिले कमतर में डाल दे, मालिक जुनून इश्क मेरे सर में
1: सर
0: डाल
1: में
0: दे।
1: डाल, बहुत अच्छा,
0: एक गजल का मतलब मुलाहजा करें कि हवा के जोर से मजबूत रस्सा टूट जाता है,
1: के
0: हवा
1: जोर
0: के
1: से
0: जोर
1: मजबूत
0: से
1: रास्ता,
0: मजबूत
1: मजबूत
0: रस्सा
1: रास्ता,
0: टूट जाता है, हमारा हौसला टूटे तो क्या क्या टूट जाता है।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत
2: वाह
1: अच्छा, वाह
0: हवा
1: वाह
0: के जोर से मजबूत रस्सा टूट
1: वाह
0: जाता
1: वाह, बहुत
0: है,
1: अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब,
0: हमारा
1: बहुत
0: हौसला
1: अच्छा, वाह वाह,
0: टूटे, हमारा हौसला टूटे तो
1: क्या
0: क्या क्या
1: कहने
0: टूट
1: सर,
0: जाता है।
1: वाह
0: शेर मुलाहजा करें कि यहाँ एहसास अपना कैद में रखो तो बेहतर है,
1: वाह वाह
0: यहाँ एहसास अपना कैद
1: वाह,
0: में रखो तो बेहतर है, जमाने भर की तहरीरों से चेहरा टूट जाता है।
1: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा,
0: यहाँ एहसास अपना कैद में रखो तो बेहतर है, जमाने भर की तहरीरों से चेहरा टूट जाता है।
2: वाह
0: मैं खुद को देखता हूँ जब कभी माजी के शीशे में,
1: क्या बात है,
2: वाह
1: बहुत अच्छा
2: वाह
1: मिश्रा,
0: मैं खुद को देखता हूँ जब कभी माजी के शीशे में, तमाचा हाल का लगता है शीशा टूट जाता है।
1: बहुत अच्छा है, बहुत
2: वाह
1: अच्छा
2: तो
1: है,
2: फिर
1: बहुत
2: बढ़िया सा,
1: अच्छा
2: वाह
1: हाल लगता
2: वाह
1: है,
0: मैं
1: वाह
0: खुद को देखता हूँ जब कभी माजी के शीशे
1: बहुत अच्छा
0: में,
1: है, वाह तो
0: वाह
1: बहुत खूब, वाह
0: तमाचा हाल का लगता है
1: वाह वाह,
0: शीशा टूट जाता है,
1: बहुत अच्छा, वाह वाह,
0: वफा का पास रखता है भला कोई जमाने में।
1: क्या
0: एक
1: बात
0: शेर
1: है,
0: देखिए कि वफा का पास रखता है भला कोई जमाने में, जरा सी देर में बरसों का रिश्ता टूट जाता है।
1: बहुत अच्छा है, बहुत खूब,
0: वफा का पास रखता है भला कोई जमाने में,
2: वाह
0: जरा सी देर में बरसों का रिश्ता टूट जाता है। शेर मुलाजा
1: वाह,
0: करेंगे, तड़प मंजिल की है तो हौसला चट्टान कर लेना,
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: तड़प मंजिल की है तो हौसला
1: क्या
0: चट्टान कर
1: कहने सर,
0: लेना, हवा जब तेज चलती है तो सहरा टूट जाता है।
1: क्या बात,
2: वाह
0: तड़प मंजिल की है तो चट्टान तड़प मंजिल की है तो हौसला चट्टान कर लेना, हवा जब

0: तेज चलती है तो सहरा टूट जाता है।
1: वाह,
0: तमन्ना मुझको मंजिल की लिए फिरती है बरसों से।
1: वाह वाह वाह,
0: तमन्ना मुझको मंजिल की लिए फिरती है बरसों से, मगर मंजिल के पास आते ही रास्ता टूट जाता है। मगर मंजिल के पास आते ही रास्ता टूट जाता है। मख्ता मुलाजा करें रोबई कि हकीकत है ये हसरत और मेरा तजुर्बा भी है।
1: वाह,
0: हकीकत है ये हसरत
1: और मेरा तजुर्बा भी है। वाह,
0: अगर सच्चे की सोहबत हो तो झूठा टूट जाता है।
1: बहुत अच्छा, बहुत।
0: हकीकत है ये हसरत और मेरा तजुर्बा भी है।
1: वाह वाह,
0: अगर सच्चे की सोहबत हो तो झूठा टूट जाता है। हवा के जोर से मजबूत रस्सा टूट जाता है।
1: क्या बात है,
0: हमारा हौसला टूटे तो क्या क्या टूट जाता है। डॉक्टर जामिन अली हसरत अपना कलाम पेश कर रहे थे। आइए अब मैं शहर के मुमताज़ व मकबूल मुतरन्नुम शायर आगा सरोज साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने कलाम से हमें नवाजे। आगा सरोज साहब।

ये चुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं दही खवातीन का आलमी दिन। सामईन, इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद दही इलाकों में रहने वाली खवातीन की अनथक मेहनत, इनकी कुर्बानियों और ज़िरात खुराक की हिफाजत और दही तरक्की में इनके कलीदी किरदार को सराहना है। दही खवातीन किसी भी माशरे की माशी और समाजी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन इसके बावजूद वह अक्सर बुनियादी हकूक़ और सहूलियात से महरूम रहती है। सामने इसी तरह हम बात करते रहेंगे, लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामिन, अभी आप समाप्त कर रहे हैं दही खवातीन का आलमी दिन। सामिन, दुनिया की तरक्की में खवातीन का किरदार नहायत अहम है। खवातीन माशरे की तामीर व तरक्की में मर्दों के शाना बशाना काम करती है। ख़ास तौर पर दही खवातीन ज़िरात, मवेशी पालने, घरेलू सनतों, बच्चों की परवरिश और ख़ानदान की देखभाल में अहम किरदार अदा करती है। इनकी मेहनत से न सिर्फ घर का निज़ाम चलता है बल्कि मुल्क की मौशियत को भी मजबूती हासिल होती है। समय इस तरह हम बात करते रहेंगे लेकिन इस नगमे के बाद। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा मोहम्मद अजीज़ और साथियों की आवाज़ में।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। इस रेडियो सी घड़ी में 10:24 हो रहे हैं। अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मैं अपनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे थे दही खवातीन का आलमी दिन। सामीन, अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 18 दिसंबर 2007 को एक करारदाद के जरिए 15 अक्टूबर को दही खवातीन का आलमी दिन करार दिया। इसका मकसद दुनिया को ये बारो करना था कि दही खवातीन न सिर्फ अपने घरों को संभालती है बल्कि वो दुनिया की खुराक का निज़ाम चलाने में भी बराबर शरीक है। दुनिया भर में ज़िरात से वाबस्ता अफराद की क़ुव्वत का एक बड़ा हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है। फसलों की बोई से लेकर कटाई तक, मवेशियों की देखभाल से लेकर दूध और दिगर मसनूआत की तैयारी तक, हर मरहले पर दही खवातीन का किरदार नुमाया होता है। अगर ये कहा जाए कि दुनिया की भूख और गिजाई किल्लत से बचाने में दही खवातीन का हाथ सबसे आगे है तो गलत ना होगा। सामाईन, इसी तरह हम बात करते रहेंगे। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में।

अपन में अपनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे थे आलमी योमे दही खवातीन के दिन के मुतालिक चंद बातें। सामिन, ये दिन हमें याद दिलाता है कि दही खवातीन सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां नहीं निभाती, बल्कि वजीरात, खुराक की पैदावार और दही मवेशियत की तरक्की में भी बुनियादी किरदार अदा करती है। इनकी मेहनत के बगैर दही जिंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। दही खवातीन की जिंदगी मेहनत, सब्र और कुर्बानी की मिसाल है। वो सुबह सवेरे उठकर घर के काम अंजाम देती है, बच्चों की देखभाल करती है, खाना पकाती है और खानदान के दिगर अफराद की जरूरियात पूरी करती है। फसलों की कटाई में हिस्सा लेती है, बीज बोती है और मवेशियों की देखभाल करती है। सामान्य इस तरह हम बात करते रहेंगे, लीजिए समाप्त कीजिए ये नकमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सामईन, बहुत सी खवातीन दूध, दही, मक्खन और दिगर अशिया तैयार करके खानदान की आमदनी में इजाफा करती है। बास सिलाई कटाई दस्तकारी और घरेलू सनतों के जरिए भी रोजगार हासिल करती है। इनकी ये कोशिशें ना सिर्फ खानदान को माशी सहारा फराहम करती है बल्कि मुल्क की मईशत को भी मजबूत करती है। लीजिए समझ कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामिन, आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा। सामिन, आज 15 अक्टूबर है, तो आज इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर्स डे भी है। यानी अगर उर्दू में कहा जाए तो योम कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, जिसको हम EME कोर डे के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं इसके मुतालिक जन मालूमात। EME कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स भारतीय फौज का वो मजबूत इंजीनियरिंग सोन है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि फौज का हर हथियार, गाड़ी, तैयारा और मौसलाती निज़ाम हर वक्त जंग के लिए तैयार रहे। हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ये दिन इस अहम तरीन तकनीकी फौजी फोर्स की क़याम की याद दिलाता है, जो अपने इंतहाई मुतासिर को नज़्बुलाइन कर्म ही धर्म यानी काम ही इबादत के तहत काम करने वाली फौजी नज्म ज़ब्त और जदीद तरीन इंजीनियरिंग की महारत एक बेहतरीन इम्तिजाज है। इस कोर की तारीख दूसरे जंग अजीम के उरूज से जुड़ी है। जैसे ही फौजें रिवायती घोड़सवार दस्तों से निकलकर मशीनी और टैंकों वाले यूनिट्स में तब्दील हुई, इंजीनियरिंग और मरम्मत के माहिर दस्तों की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ गई। चुनाचे 15 अक्टूबर को इस फोर्स को बाकायदा तौर पर इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से कायम किया गया। समझ लीजिए, समाप्त कीजिए एक नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सामईन, आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा। सामईन, 1947 में आज़ादी के बाद इसके नाम से लव्ज़ इंडियन हटा दिया गया और यह कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स बन गई। सामईन, आज़ाद मुल्क की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसमें बड़े पैमाने पर तब्दीली दी गई की गई। दिहाइयों बाद जब जंगी हिकमत अमली में पेचीदा रडार, सैटेलाइट सिस्टम्स और कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ा तो इलेक्ट्रिकल की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल कर दिया गया। फौजी हिकमत अमली में गोला बारूद और फौजियों की तादाद इस वक्त तक बेमाने है जब तक हथियार सही काम ना करे, मौसलाती निज़ाम ठीक ना हो जाए। EME कोर मुल्की दिफाई आलात के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। इनका बुनियादी मकसद हर हालत में आलात को चालू रखना होता है और ये फौज के हिस्से में मौजूद रहते हैं। EME के इंजीनियर्स सिर्फ पीछे वर्कशॉप में नहीं बैठते, जंग के दौरान ये टीमें फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले दस्तों के साथ साथ चलती है। दुश्मन की गोलियों की बौछार के दरमियान भी ये टैंकों और तोपों की मरम्मत का काम करते हैं ताकि जंगी कार्रवाई ना रुके। लीजिए, समा कीजिए ये नगमा।

समय ना ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामईन, सियाचिन की ग्लेशियर्स की हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी और ऑक्सीजन की कमी हो या थार के रेगिस्तान की झलसा देने वाली गर्मी, ईएमई के जवान हर नामवाफिक मौसम और इलाके में रडार और इंजनों की देखभाल का काम कामयाबी से अंजाम देते हैं। ये कोर आर्मी एविएशन विंग के हेलीकॉप्टर्स की परवाज की सलाहियत और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स की मरम्मत की मुकम्मल जिम्मेदार है। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामईन, अभी आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा। लीजिए समाप्त कीजिए इस महफिल का आखिरी प्रोग्राम पयाम-ए-शब। तहरीर और पेशकश होगी नदीम अख्तर जैदी की।

0: कुछ बिखरी हुई यादों के किस्से भी बहुत थे, कुछ उसने भी बालों को खुला छोड़ दिया था। बाज़ यादें इंसान के दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं, मगर हमें माजी में उलझकर अपने हाल को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जिंदगी में गुजरे हुए खूबसूरत लम्हात हमेशा याद रहते हैं, मगर यादों को दिल में महफूज रखना और उनमें खो जाना दो अलग बातें हैं। माजी हमें खुशी, तजुर्बा और सबक दे तो उसे नेमत समझे, लेकिन अपने आज और आने वाले कल को माजी के हवाले न करें। खूबसूरत यादों को मुस्कुराहट के साथ याद करें और जिंदगी का सफर आगे बढ़ाते रहें।
1: समय ना स्टूडियो सीढ़ी में रात के 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हात में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बारी बारी से दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: ತಾರಿಣಿ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है. श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी.
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
0: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी. नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है. सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है. दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉल

0: लिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है, उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में DCP नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हो जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
2: Ladakh ki pragati aur vikas mein ek aur adhyay jud raha hai. Aaj Ladakh mein kai ahem development projects ka lokarpan. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT 7C communication satellite for the Indian Air Force and Varun Astra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT 7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varun Astra heavyweight torpedoes worth over 1,500 crore rupees was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi.

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Shagun Chopra with my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है शगुन।
0: Yes, benchmark domestic indices surge around 2%. Sensex jumps over 1500 points. Nifty settles at nearly 23,000 level. Country's merchandise exports rise over 23% to $44.4 billion in September this year. And global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 2% का उछाल। सेंसेक्स में 1500 से ज्यादा अंकों की तेजी। निफ्टी 23,000 अंक के आसपास बंद हुआ। देश का उत्पाद निर्यात इस वर्ष सितंबर में 23% की बढ़त के साथ $44.4 अरब बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

0: research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक यानी 2.11% उछलकर 74,316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक यानी 1.66% की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार का प्रदर्शन आज मुख्य सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा। मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.4% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended higher today. The Sensex surged 1,534 points or 2.11% to close at 74,316. The Nifty rose 375 points or 1.66% to settle at 22,997. The broader market at the National Stock Exchange underperformed the frontline indices. The mid-cap 100 index dropped nearly 0.4% and the small-cap 100 index shed 1.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 27 कंपनियों के शेयरों में आज तेजी दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा 4.6% ऊपर आया, आईसीआईसीआई बैंक 4.2% के लाभ में रहा और रिलायंस में 4% की बढ़त दर्ज हुई। इसके विपरीत बीईएल और ट्रेंट में 0.6% की गिरावट आई, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.1% से ज्यादा नीचे आ गया।
0: In the sectoral indices on the BSE, 15 out of 28 sectors ended in the positive note. Among the top gainers, top 10 banks climbed 2.3%, private banks advanced over 1.8%, and IT jumped 1.5%. In contrast, capital goods dropped over 2.4%, power slipped more than 1.8%, and PSU banks dipped 1.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,668 companies declined, 1,720 advanced, and 203 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले आज 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 रुपए पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एकेबी, आज के मार्केट की हम बात करें तो सेंसेक्स में हमने देखा लगभग 1,500 अंक से अधिक का उछाल आया, वह निफ्टी भी 23,000 के आसपास पहुंच करके बंद हुआ। कई दिनों बाद ये आंकड़े हमारी आंखों के सामने हमें नजर आ रहे हैं, तो इन तेजी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, घरेलू कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, या फिर इसे बाजार में एक मजबूत वापसी का संकेत माना जा सकता है?
2: देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बाजार में मजबूती आने का ये संकेत है। ये जो आज का जो उछाल आपने देखा है, इसको हमें बारीकी से देखना है। इस उछाल में के पीछे आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हालांकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक सेंटर्ड रैली है, इसमें अगर आपने जैसे अभी पढ़ा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई है
1: जी।
2: तो ये रैली सिर्फ फोकस्ड है लार्ज कैप स्टॉक में, ये रैली सिर्फ फोकस्ड है आईटी सेक्टर में, ये रैली फोकस्ड है प्राइवेट सेक्टर बैंकों में। आपको मालूम होगा कि कल सरकार ने बहुत बढ़िया एक निर्णय लिया था कि आईडीबीआई बैंक का स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन होगा उसका। सो उसी का एंड आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा एक जो Q2 जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसमें काफ़ी काफ़ी उछाल आया है, और उसी के कारण हम ये देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक में आपका जो बढ़त आज आपको हासिल हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बढ़ोतरी हमें पिछले कई महीनों में दिखी, वो आज वो काफ़ी गिरावट में आई। उसका कारण भी ये है कि काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई आज क्योंकि उस लेवल में, और दूसरी बात यह है कि जो जो रुपया जो है और रुपए में थोड़ी मजबूती आई है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीशन से, उससे भी जो मार्केट में थोड़ी बहुत मजबूती आई है। पर अगर आप ये समझे कि आज की जो जो मजबूती आप देखी ये कोई अगले दिनों का संकेत है, ये मैं नहीं मानूंगा। ये वॉलेटिलिटी जो मार्केट में है वो अभी भी चलती रहेगी, और ये एक रिकवरी फेज है, और रिकवरी फेज का कारण जैसे मैंने कहा आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंकिंग में और लार्ज कैप स्टॉक में जो एक रिकवरी और Q2 अर्निंग्स की जो एक मजबूती है वो दर्शाती है।
0: सर

0: mid cap and small cap stocks, they face pressure despite the rally in the market. So, and I have two questions for you.
1: Sure.
0: Both of them I'll question right now only. So, does this imply that investors are concentrating their capital only in select large cap companies? First one. And what signal should retail investors take from this particular divergence?
1: So, I think what the investors are doing is they are pulling their money out of the small and the mid cap stocks. Because the small and the mid-cap stocks had already appreciated to a level where profit booking was possible. Mm. So they are pulling their money out. And they are also reinvesting in the large-cap stocks and taking positions and keeping their powder dry, because we are entering into a major big IPO phase. And when you are entering into a major IPO phase, like the Jio, Reliance Jio IPO is going to hit the markets very soon. It will be one of the largest IPOs. So that IPO would mean that the domestic investors are gearing up for that position. So I think the mid-cap and the small-cap profit booking has led to the surplus, which is going into the large-cap, and the large-cap is being positioned as a preparatory step for investing in the new IPOs that are coming.
2: AKB, आज आईटी और बैंकिंग शेयर्स ने मार्केट को काफी सहारा दिया. आपने भी आईटी शेयर्स का जिक्र किया है, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में काफी कमजोरी देखी जा रही. तो इन्हीं सेक्टर्स में बाजार आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ऐसा फेज आपको आपको लगता है कि आने वाले समय में बिकवाली जो व्यापक हो रही है उसमें कुछ कमी आएगी और सभी चीजों में आगे एक जैसा माहौल देखने को मिलेगा?
1: आपने एक बहुत सही प्रश्न किया है. मुझे लगता है कि जो आईटी सेक्टर की जो स्ट्रेंथ जो है, बहुत क्वार्टर के बाद एआई की जो चपेट आईटी सेक्टर में आई थी, उसको उसके ऊपर जो इंडियन आईटी सेक्टर की जो बायोन्सी, जो रेजिलियंस जो है, उसको दर्शा रहा है. और बहुत क्वार्टर के बाद जो Q2 अर्निंग्स जो आ रही हैं, सब आईटी कंपनीज की Q2 अर्निंग्स में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है. और उसी के लिए मैं समझता हूँ कि आईटी सेक्टर को हमें ट्रैक करना पड़ेगा और किस तरह से हम आगे आईटी सेक्टर को देखेंगे. उसको हमें ये एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर रहेगा, मैं समझता हूँ.
0: Also, Mr. Bhattacharya, PSU bank performance. I mean, what's your opinion about PSU bank performances nowadays?